0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 रेडियो

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 4:04 हो चुके हैं दोस्तों. प्यारा सा दिन लग गया. मंगलवार का 11 तारीख कहते हैं ना कि 11 अगस्त 2026 हो भी गया और सुबह की हल्की ठंडक चारों तरफ, हल्का सा अंधेरा अभी बाकी है. सड़कों पर सन्नाटा है, कोई ट्रैफिक नहीं, बस हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें गिर रही हैं और इसी खामोशी में धीरे धीरे जाग रहा है हमारा घर, हमारा देश, जो इस वक्त उठ गए हैं इस खूबसूरत सुबह की गवाह बन रहे हैं. उन सबका दिल से स्वागत है RM2 रेडियो मस्ती पर और मैं हूँ आपके साथ पूनम. इन्जॉय कीजिए अपनी मॉर्निंग को, अपनी मॉर्निंग की चाय को और इन गानों को.
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:17 हो चुके हैं और टाइम ऐसे भागता है जैसे उसके टाइम के पैरों के पास कोई ऐसा कोई व्हील लगा हुआ है कि भाई भागते जाओ और हम भी ऐसे पूरे दिन भागते रहते हैं। एहसास ही नहीं होता कि सुबह कब शुरू हुई और रात कब होगी और फिर अगले दिन की सुबह हो गई। तो कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है, इसको ऐसे ही मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, नॉट छोटी सी स्माइल, बड़ी सी स्माइल करते हुए निकालते रहना है। और हमारे गाने चल रहे हैं आपके लिए, आपकी कोई फरमाइश है तो हम तो इस टाइम सुबह तो नहीं लेते, पर हाँ अपने दिल में रखिए पूरे दिन के जो आरजेस होंगे आपको बिल्कुल आपके साथ खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, वाउचर्स मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, उसके साथ में अगर आपकी फरमाइश होती है वो भी हम चलाते हैं। पर आपको सिर्फ इतना कहते हैं कि मॉर्निंग जब होती है तो आप मुस्कुराते हुए जिए। अगर आपके हाथ में इस समय चाय की प्याली है या स्टेयरिंग है, बस स्माइल कीजिए, इंजॉय कीजिए। ये गाने गाने हैं सिर्फ आपके, आपकी पसंद के लिए, आपके मूड के लिए। आपको बस इतना ही करना है, आपकी स्माइल के साथ आपको बस हमें अपना मैसेज भेजना है। अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है किसी के लिए, कोई ऐसा खास इंसान जिसके लिए आपके दिल धड़कता हो, आपने भेजना है 5499-1294 पर। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:30 हो चुके हैं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, और आप सबकी भी बहुत बहुत मेहरबानी। इतने सारे मैसेजेस करते हैं, इतना प्यार देते हैं RM2 रेडियो मस्ती को। हमारे साथ जुड़ी थी अभी इस समय नानी जी, जिनका कॉल आया और उन्होंने कहा पूरी रात मैंने रेडियो सुना है, ना जाने मुझे नींद ही क्यों नहीं आई। मैं तो यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छा है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, बट प्रॉमिस कीजिए कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगी थोड़ी देर के बाद, मेरे जाने के बाद, और रेस्ट करने के बाद जब उठेंगी तो बहुत ही फ्रेश फील करेंगी, थोड़ी नींद भी ज़रूरी है। उसके साथ में हमारे

0: से इस समय जुड़े हुए हैं सरोज राजन मोनिका विशाल उमेश स्नाया क्या बात है सब दिल से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा इतने प्यारे गाने चल रहे हैं बस दिल करा उठ ही जाते हैं थैंक यू सो मच सुरेश शर्मा साजदा जी जुड़े हुए हैं अपने परिवार और बहुत सारे प्यार के साथ ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और अपनी पत्नी को बहुत मिस कर रहे हैं और बस इतना ही कहना चाहते हैं जिंदगी का एक बहुत ही प्यारा भगवान की तरफ से तोहफा हो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए अरे क्या बात है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना आप प्यार और विश्वास अपनी पत्नी को देते हैं हमेशा खुश रहिए रिया अंशी केशनी चाची प्रमिला रामचंद्रा कविता बर्तन जी जो कि इस समय साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे गानों की फरमाइश के साथ में कह रहे हैं कि सबको गुड मॉर्निंग क्या बात है गुड मॉर्निंग आपको भी धनेश्वर जी साथ दे रहे हैं अपनी वाइफ सुनीता जी के साथ रेखा निशा देवदास फैमिली और सभी जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को थैंक यू साबिर जी का आज बर्थडे है जो कि पूरा स्टाफ और कस्टमर्स विश कर रहे हैं जो कि मेबर्ग से रहने वाले हैं आपको विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे हमेशा खुश रहें इन्जॉय कीजिए साधना जी मुकेश जी जो दोनों लाल माटी से साथ दे रहे हैं अब्दुल सायरा बानो जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं जैशन टिम्बा जिबू नोमरियान दानो अंगूठिया आकाश श्रवण रामदेवर एंड मेविन साथ दे रहे हैं इन्जॉय करते रहे अपने गानों को साथ देते रहिए हमारा हमारे प्यार को सलाम भी आपके लिए और हम इतना ही कहेंगे जो भी गाने आप सुन रहे हैं उसको दिल से महसूस कीजिए एंजॉय कीजिए ये गाना
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम। नई सुबह है तो हौसला भी नया रखिए। चलिए देखते हैं आज आपकी राशि आपके लिए क्या प्यारा सा संदेश लेकर आई। सबसे पहले शुरू करते हैं
2: एरीज मेष राशि।
1: आज जो सोच रखा है उस पर कदम बढ़ाइए, आपका जोश किसी और का हौसला भी बढ़ाएगा। काम में आपका अंदाज पसंद किया जाएगा और आप जो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जी रहे हैं उसका अंदाज़ा सभी को है। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 5।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज अपनी रफ्तार से चलिए, जल्दबाजी नहीं, किसी अपने की छोटी सी मदद खुशी देगी। काम के बाद अपने लिए भी समय रखिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी बात लोगों का मूड बना सकती है। नया आइडिया आए तो उसे जरूर आजमाइए। हंसी मजाक के साथ दिन हल्का रखिए। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज किसी अपने का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आपकी परवाह सामने वाले के लिए खास होगी। घर और काम दोनों में अच्छा तालमेल रहेगा। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज कॉन्फिडेंस थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नई जिम्मेदारी मिले तो खुशी से अपनाइएगा। आपकी अच्छी एनर्जी लोगों को भी मोटिवेट करेगी। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी काम कीजिए और थोड़ा आराम भी। खुद को शाबाशी देना मत भूलिएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 8।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज प्यार से कही बात कमाल कर सकती है। किसी की सच्ची तारीफ जरूर कीजिएगा। आपका अच्छा मूड तो होगा ही, दूसरे का भी अच्छा मूड बनने वाला है और आपकी वजह से किसी का कहते हैं ना कि दिन बनने वाला है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज मुश्किल काम से पीछे मत हटिए। आपकी जिम्मेदारी रास्ता निकाल लेगी। खुद पर भरोसा रखिए, आप सब कुछ संभाल लेंगे। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज रूटीन से थोड़ा फन जोड़िए। कुछ नया करने का मौका मिल सकता है तो उसे जरूर अपनाइए। आपकी एनर्जी पूरे दिन बनी रहेगी और आपकी एनर्जी से दूसरों को मोटिवेशन मिलेगी। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 4।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज काम कीजिए लेकिन खुद को थकाइए मत। एक छोटा सा ब्रेक या एनर्जी को वापस ला सकता है और थोड़ा सा एनर्जी के लिए आपको ब्रेक लेना जरूरी है। आपकी स्टेडी पेस आपको आगे रखेगी। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 8।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपका नया आइडिया काम आ सकता है। टीम में किसी की मदद करने का मौका मिलेगा। आपका अलग अंदाज सबको अच्छा लगेगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 5।
2: Pisces मीन राशि।
1: आज दिल खुश रखने वाली बात हो सकती है। किसी की मदद करके आपको भी अच्छा लगेगा। प्यार और सच्ची और अच्छी सोच के साथ दिन को बिताइए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 6। तो दोस्तों आज खुश रहिए, हौसला रखिए और जहां मौका मिले किसी का दिन भी अच्छा बनाइए। मैं थी आपके साथ पूनम, आपका दिन शानदार हो। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
0: Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार.
7: नमस्कार आदाब. कल दिन के 11:15 बजे से फेडरेशन दे ट्रावायर्स यूनी के प्रतिनिधि आत्मा शांतो भूख हड़ताल पर हैं. वो एम्प्लॉयज रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर दोबारा गौर करने की मांग कर रहे हैं. श्रमिक संघ प्रतिनिधि के मुताबिक ये कानून कर्मचारियों की पूरी हिफाजत नहीं करते हैं, खासतौर पर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की. कर्मचारियों की बेहतर कार्य शर्तों के सिलसिले में बात करने के लिए निजी सेक्टर के कुछ मालिकों की नामंजूरी पर भी आत्मा शांतो ने बात की. बेलोम्ब्रा के एक होटल में बलात्कार की कोशिश संबंधी एक मामले का भी उल्लेख किया गया. आत्मा शांतो के मुताबिक घटना के 3 दिन बाद उस विदेशी कर्मचारियों को वापस अपना देश लौटना पड़ा और शकी गुनहगार ने उससे 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर चुप रहने की मांग की. रेनन टापू और मुर्शस के बीच 156 किलो गांजे की तस्करी के मामले पर तहकीकात जारी.

थी कल गुलशन गोविंद ब्लैक रिवर अदालत में पेश हुए उन पर अस्थायी इल्जाम दर्ज है। उनके वकील ने हिरासत में गांजे के होने और गांजा उगाने के आरोप के सिलसिले में अपने मुवक्किल की रिहाई के लिए एक मोशन पेश किया। ओबेन मोंगा पीले ने बताया कि अगले 19 अगस्त तक गुलशन गोविंद पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे। भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकानों को प्रदान करने की योजना में तेजी लाने का ऐलान कर रहा है। 31 जुलाई 2026 तक न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट NSLD के करीब 2300 इकाइयों की परियोजना चलाई गई जो 12 जगहों पर है। 1200 से ज्यादा मांगों को स्वीकार किया जा चुका है और करीब 300 परिवारों को अपने नए घर की चाबी भी प्रदान की जा चुकी है। विदेश में कोलंबिया में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। अब तक मरने वालों की संख्या 111 तक पहुंची है। बहुत सी इमारतें रह गई हैं जिसकी वजह से मौतों की संख्या के बढ़ने की आशंका है। तो अभी के लिए बस इतना ही मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान घने बादल होंगे और आज रात बादल घेराएंगे। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके तेज झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पूर्व वाले लगूनों में। इसी वजह से वहां के लगूनों में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 21 से 24, साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह 6:34 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:55 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, शुभ दिन आप सभी को।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 6:16 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ. मॉर्निंग मॉर्निंग होती है और बाहर का अंधेरा छट चुका है, प्यारी सी सर्दी आ गई है, यानी कि मतलब हमको अभी एहसास हो रही है. और जो इस समय कह रहे हैं ना ठंडे ठंडे पानी को देख के कि क्या करें, ये तो मैं नहीं कुछ बता सकती कि इस पानी का क्या करें. सच में बहुत ठंड है बाहर, पर फिर भी क्या करें, काम पर तो जाना है, रेडी होना है, फैंटास्टिक से कुछ कपड़े पहनने हैं और ऐसी कुछ स्टाइल देना है कि जिससे आपका मॉर्निंग तो अच्छा हो साथ में इवनिंग तक एनर्जी बनी रहे. चलिए भाई, दो तीन प्यारे प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं. सब लोग इंतजार में होते हैं अपनों के लिए प्यारे से मैसेजेस जो भेजते हैं. सुया बिहारी जी कोंगमा से जुड़ी हुई हैं और अपनी अपना बेटा विक्की, बहू कीर्ति, बेटी श्वेता एंड दामाद रोशन सभी को कह रही हैं कि काम पर तो जा रहे हो, खाना साथ लेके जाना. और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन रिद्धि, सोनाक्षी, अवनी और वंश को बहुत बहुत प्यार, क्या बात है. साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी एक और बहुत ही प्यारी सी दोस्त अमृत जी, जो कि एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं और सभी को कहती हैं गुड मॉर्निंग, क्या बात है. साथ में हमारी हिमलता भूजन जी जुड़ी हुई हैं और स्पेशली वंशिका अभिनव मेराज को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड विशेस भेज रही हैं और सिर्फ इतना कह रही हैं कि भूजन फैमिली को हमेशा खुश रहो, ऐसे ही प्यार बांटते रहो, आप बहुत अच्छे हो, क्या बात है. ऐसे ऐसे प्यार वाले मैसेजेस आते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है. बट जो अभी गाना चला रही हूँ ना, मैंने इसीलिए स्पेशली ये चुना है कि जिनको पानी से डर लगता है उनको हम याद दिलाते हैं समुद्र की. चलो भाई एंजॉय करते हैं इस गाने को.
0: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.

0: अब आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार।
1: साढ़े छह बजे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। कल दिन के 11:15 बजे से फेडरेशन डी ट्रैवेलर्स यूनियन के प्रतिनिधि आत्मा शांतो भूख हड़ताल पर हैं। वो एम्प्लॉयज रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स पर दोबारा गौर करने की मांग कर रहे हैं। श्रमिक संघ प्रतिनिधि के मुताबिक ये कानून कर्मचारियों की पूरी हिफाजत नहीं करते हैं। भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकानों को प्रदान करने की योजना में तेजी लाने का ऐलान कर रहा है। 31 जुलाई 2026 तक न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट NSLD की करीब 2300 इकाइयों की परियोजना चलाई गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास में बाधाएं उत्पन्न करने वाले लोगों को अगर काम नहीं करना है तो वे अवकाश ले सकते हैं। सरकारी नेता जनता की बेहतर सेवा के लिए नई तरक्कियां लाने के पक्ष में है। कल दो मोशन माहिरों ने उनसे मुलाकात की। और विदेश में कोलंबिया में भूकंप की वजह से आपात स्थिति की घोषणा। मरने वालों की तादाद 111 तक पहुँच गई है। नमस्कार आदाब। कल दिन के 11:15 बजे से फेडरेशन डी ट्रैवेलर्स यूनियन के प्रतिनिधि आत्मा शांतो भूख हड़ताल पर हैं। वो एम्प्लॉयज रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर दोबारा गौर करने की मांग कर रहे हैं। श्रमिक संघ प्रतिनिधि के मुताबिक ये कानून कर्मचारियों की पूरी हिफाजत नहीं करते हैं, खासतौर पर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की। कर्मचारियों की बेहतर कार्य शर्तों के सिलसिले में बात करने के लिए निजी सेक्टर के कुछ मालिकों की नामंजूरी पर भी आत्मा शांतो ने बात की। बेलोम्ब्र के एक होटल

0: अप्रैल में बलात्कार की कोशिश संबंधी एक मामले का भी उल्लेख किया गया। आत्मा शांतो के मुताबिक घटना के 3 दिन बाद उस विदेशी कर्मचारी को वापस अपना देश लौटना पड़ा और शक्की गुनहगार ने उससे 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर चुप रहने की मांग की। माधवी जागौना, गीता सुनारान।
1: आत्मा शांतो ने इस सोमवार 10 अगस्त को सुबह 11 बजे के कुछ ही समय बाद पोर्टलिस की कंपनी बाग में भूख हड़ताल शुरू कर दी। फेडरेशन डी ट्रावायर यूनी के वार्ताकार ने प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियों द्वारा सामूहिक बातचीत से इनकार किए जाने की निंदा की है।
2: Gagne augmentation salaire. Je gagne, ben mérite une crise. Trois quarts du temps, ben travailleur pénalisé. Je empêche le syndicat pour faire réunion sur le site de travail selon la législation. Mentalité de jour en jour, après changer dans le secteur du privé. Bien que le gouvernement révise ça de la loi là, Employment Relations Act et Workers' Rights Act.
1: आत्मा शांतो के इस कदम को मॉरिशस लिबरल कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। हनीफ पिगन चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को फिर से मजबूत किया जाए ताकि कामगारों के अधिकारों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके।
0: रिनिन टापू और मॉरिशस के बीच 156 किलो गांजे की तस्करी के मामले पर तहकीकात जारी हैं। कल गुलशन गोविन ब्लैक रिवर अदालत में पेश हुए, उन पर अस्थाई इल्जाम दर्ज हैं। उनके वकील ने हिरासत में गांजे के होने और गांजा उगाने के आरोप के सिलसिले में अपने मुवक्किल की रिहाई के लिए एक मोशन पेश किया। रूबेन मुंगा पीले के मुताबिक अगले 19 अगस्त तक गुलशन गोविन पुलिस की हिरासत में ही रहेंगी। ग्रेट ब्रिटेन में काम करने वाले 2 मॉरिशन माहिर मॉरिशस में ऑफ्थाल्मोलॉजी क्षेत्र में तरक्की लाने का मकसद रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्क्रीनिंग की जा सकती है और माइक्रो इम्प्लांट से ग्लूकोमा का इलाज किया जा सकता है। दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मॉरिशस को 10 इम्प्लांट्स भी दिए। कल उन्होंने पोर्टबी में ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
3: qu'ils ont décidé de venir Maurice against the odds. Qui fait me dire ça? Ils ont mis le bâton dans la roue ici dans Maurice pour ne pas réussir à faire ce qu'ils ont fait. Ils ont des Mauriciens, des bouchers, qui ont aussi préoccupé un poste de gros poste consultancy dans l'Angleterre. Ils n'ont pas fait un sou pour venir Maurice là. Ils ont venu donner les temps de tirer pour Mauriciens. Mais dans le ministère de la Santé, tout le monde peut bloquer tout. Pour un piste. Peut-être par exemple, effet Diaoula. Mon désaccord, ça. Combien de monde est en dans Maurice? Nous connaissons. Tout le monde, beaucoup de monde a un glaucoma. Il a même un plant pour glaucoma qui coûte 1000 livres. Il a même 100 cadeaux pour nous 10. Pas pérécifère. Parce qu'il y a un blocage, il y a un système, il y a un procédure, etc. C'est comme ça que vous gouvernez ça pays là. C'est pourquoi vous voulez faire ça sans moi qui vous a fait là. Si du monde parle de travail, prends votre tête, allez voir. Puis pas bloc pour le pays. Au contraire, moi, bien remercier les autres qui ont décidé de venir Maurice. Pas peut prendre soin à nous là. Pour aider Maurice. Mais nous avons un système de Maurice qui compte bloquer. Parce que nous croyons contre nous-mêmes. Voilà la situation. Donc pour moi, c'est très positif.
4: Ce qui nous peut se faire, c'est amener de nouveau l'opération glaucome dans Maurice, qui en ce moment. Bandimus, ils ont fait ça l'opération dans l'hôpital des hauts. L'implant là, c'est un implant appelé Preserve Flow. Pour faire l'opération, pour diminuer la tension dans les yeux, pour capable empêcher Bandimus de venir aveugle depuis le glaucome.
0: भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकानों को प्रदान करने की योजना में तेजी लाने का ऐलान कर रहा है। 31 जुलाई 2026 तक न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट एनएसडी की करीब 2300 इकाइयों की परियोजना चलाई गई जो 12 जगहों पर हैं। 1200 से ज्यादा मांगों को स्वीकार किया गया और करीब 300 परिवारों को अपने नए घर की चाबी भी दी गई। जहां तक एनएचडीसी के मकानों की बात है, 5 परियोजनाओं के तहत 185 इकाइयों पर काम किया जा रहा है। इन इकाइयों के लाभार्थियों की अलग अलग कहानी है जिन्हें बरसों बाद एक छठ नसीब हो रही है। जेनी येलापा असितरघु।

0: मॉरिशस में आज भी कई परिवार उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे अपने घर के मालिक बन सकें। इन्हीं में 28 वर्षीय कैरोल सालोमन भी शामिल हैं। दो बच्चों की अकेली माँ कैरोल के लिए अपना घर हासिल करना महज एक संपत्ति खरीदना नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है। आज मैं अपने माता पिता और अपने दो बच्चों के साथ एक साथ जीवन बिता रही हूँ। आज अपने घर में एक मालिक के नाते रहते हुए बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हम चैन की नींद सो सकते हैं जहाँ इस बात का कोई डर नहीं कि कोई हमें घर से बाहर निकाल देगा। कैरोल की कहानी मॉरिशस के कई अन्य परिवारों से मिलती जुलती है। रेशमा गणेश ने भी मुश्किलों से भरे कई साल देखे हैं। तलाकशुदा और दो बच्चों की मां रेशमा 13 वर्षों से अपने घर की चाबी का इंतजार कर रही थीं। 13 साल के इस लंबे इंतजार के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज उनके लिए ये राहत और सुकून का पल है। सबसे बढ़कर इस बात का संतोष है कि आखिरकार उनके सिर पर अपनी छत है। अठारह सालों की शादी के बाद मेरा पति किसी दूसरी महिला के साथ चला गया, तब मैं उसी घर में अपने बेटे के साथ रहती थी, पर मेरे पति ने मुझे घर से निकालने का हर संभव कोशिश किया। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं अपने खुद के घर में आ चुकी हूँ। अपना और अपने बेटे के लिए ये सब कुछ किया मैंने, मानिए हमें स्वर्ग मिल गया है। वही कुछ परिवारों के लिए अपना घर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है। मोहम्मद नासिर नाजुर अली हर हाल में अपने परिवार को ये सुरक्षा देना चाहते थे, एक ऐसा घर जिसे वे अपना कह सकें। मेरे घर में एक शिशु है, तो जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है मुश्किल हो रही थी कि एक ही घर में खाना पकाएं, कपड़े इस्त्री करें इत्यादि, और उस पर बच्चा चलने लगा है तो कभी भी एक दुर्घटना घट सकती है। अब एक अभिभावक होने की जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होती है जहां एक घर हो और बच्चा भी एक सुरक्षित पर्यावरण में पले। इन परिवारों के लिए ये घर महज ईंट और सीमेंट से बनी इमारतें नहीं है, ये बच्चों के लिए स्थिरता, माता पिता के लिए राहत और कुछ परिवारों के लिए वर्षों से चले आ रहे लंबे इंतजार का अंत है। क्योंकि हर खुलने वाले दरवाजे के पीछे एक कहानी है, और कभी कभी बस इतनी सी खुशी होती है कि आखिरकार कह सके ये हमारा घर है।
1: इन दिनों मॉरिशस में बारिश कम है, आने वाले महीनों में भी ऐसी ही हालत होगी। मॉरिशस के मौसम भवन के मुताबिक अक्टूबर तक एक एलिनो के असरात की वजह से वर्षाएं कम होंगी। जलवायु परिवर्तन के माहिरों के मुताबिक मॉरिशस को बारिश का पानी स्टॉक करने के लिए मिनी रिजर्वोयर जैसे हल पर काम करने की जरूरत है। विस्तार क्लोडेट जोफा गादीवादू और यचना मिश्रा के साथ।
2: नदी का पानी बह रहा है लेकिन कम ही। पिछले महीने लगभग सूख चुकी नदी को हाल की बारिश से कुछ फायदा हुआ। बारिश तो हो रही है लेकिन कम ही, और उन जगहों पर नहीं जहां जलाशयों और भूमिगत जलाशयों को लाभ हो। एल नीनो के साथ अक्टूबर में अनुमानित बारिश उतनी नहीं होगी जितनी सूखे की समस्या को मिटाने के लिए काफी हो। ऋतु विज्ञान केंद्र अनुमान को प्रभावित करने वाली अन्य पहलुओं पर नजर जमाए हुए है।
3: Entier les mondes peut trouver, même l'OMM peut trouver ça, même un grand centre peut trouver, qui ne peut pas être un El Nino assez fort, on appelle ça strong to very strong El Nino. Donc si ça peut arriver, définitivement, que nous, en principe, nous avons gagné la pluie relativement inférieure à la moyenne saisonnière, mais quand même, il y a les autres, qui nous appellent climate drivers, IUD, SIUD, qui vous caravent l'impact. Et vous connaissez, étant donné qu'il y a température pour comment chauffer, et nous peut atteindre qu'il y a de nos côtés nous ben, une température la mer pour chaud. Bon, ça pas empêche une grosse brise de mer formée, et au cas

0: गहन खोल आपली।
1: हर साल बारिश में कमी अब आम बात हो चुकी है। बारिश का पानी जमा करने के लिए ठोस कदम तलाशना जरूरी है।
2: Depuis 1930 jusqu'à 2020, donc la pluie diminuait par environ 25%. De janvier à avril, nous gagnons majoritairement nous ban la pluie vignée. Et ça veut dire que nous devons optimiser, nous devons collecter le maximum de pluie possible. Ban réservoir est bien difficile pour construire parce que je prends un espace volumineux. Et dans le pays, quand nous pouvons expandre, donc le land use bien important. Donc, nous t'y propose, par exemple, une solution qui n'appelle un petit réservoir, un mini réservoir.
1: El Niño का अन्य प्रभाव हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में तूफानी गतिविधियों की कमी। विश्व ऋतु विज्ञान केंद्र संगठन के अनुसार 2026-2027 में तूफानी अवधि में भी देरी होगी। समय के साथ साथ अनुमान भी और ठोस किए जा सकेंगे।
3: लिसालिन में इन दिनों एलिफेंट सील हैं, इसलिए मत्स्य मंत्रालय जनता से मांग करता है कि कोई भी उसके करीब ना जाए। एक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जानवर बीमार है, ना जख्मी है और ना ही उसने अपना रास्ता खोया है। अक्सर ये एलिफेंट सील मॉरीशस के साहिलों तक आ जाते हैं और फिशरीज एक्ट 2023 के तहत वे सुरक्षित हैं। जो भी उस एलिफेंट सील को परेशान करेगा या फिर छूने की कोशिश करेगा या उसे वहां से हटाएगा तो उसे 25 मिलियन रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है। अधिकारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। कोलंबिया में गए सालों में सबसे तेज भूकंप पेश आया है और मरने वालों की संख्या कम से कम 111 तक पहुंची है। कोलंबिया में राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि अभी तक कई इमारतें ढह गई हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या के बढ़ने की आशंका है।

और अब मॉरीशस में मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान घने बादल होंगे और रात को बादल घिराएंगे। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। पूर्व में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में न जाने की मांग की जा रही है। आज दोपहर बाद पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में समुद्र की हालत बेहतर होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 21 से 24, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शाम 5:55 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबर एक बार फिर से पेश है। कल दिन के 11:15 बजे से फेडरेशन दे ट्रावायर्स यूनियन के प्रतिनिधि आत्मा शांत भूख हड़ताल पर हैं। वे एम्प्लॉयज रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर दोबारा गौर करने की मांग कर रहे हैं। श्रमिक संघ प्रतिनिधि के मुताबिक ये कानून कर्मचारियों की पूरी हिफाजत नहीं करते हैं। भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकानों को प्रदान करने की योजना में तेजी लाने का ऐलान कर रहा है। 31 जुलाई 2026 तक न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट NSLD की करीब 2300 इकाइयों की परियोजना चलाई गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास में बाधाएं उत्पन्न करने वाले लोगों को अगर काम नहीं करना है तो वे अवकाश ले सकते हैं, कहा प्रधानमंत्री ने। सरकारी नेता जनता की बेहतर सेवा के लिए नई तरक्कियां लाने के पक्ष में हैं। कल दो मोशन माहिरों ने उनसे की मुलाकात। और विदेश में कोलंबिया में भूकंप की वजह से आपात स्थिति की घोषणा, मरने वालों की तादाद 111 तक पहुंची है। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर

0: में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार राधा।
1: NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। बीडीसी लेन मोताई ब्लॉश में 63 साल की 63 years old श्रीमती पर्वती ठाकुरदीन, श्रीमती पर्वती ठाकुरदीन जो मन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर बीडीसी लेन मोताई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। नंबर सेवन कैरिटा लेन प्लेनवेट में 78 साल की 78 years old बीबी आमिना घुरबीन, बीबी आमिना घुरबीन पैदाइशी नाम रामजन जो आमिना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज साढ़े दस बजे इनके घर नंबर सेवन कैरिका लेन प्लेनवेट से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए प्लेनवेट की अलक्सा मस्जिद और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। मुसलमान दाउताल ब्राह्मस्थान में 75 साल की 75 years old श्रीमती धनवंती मावा, श्रीमती धनवंती मावा पैदाइशी नाम रामभरत जो तारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर मुसलमान दाउताल ब्राह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्राह्मस्थान की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। त्रियो रोड त्रियोले में 80 साल के 80 years old श्री ज्ञानदत्त रामदान जो देवदत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सवा एक बजे इनकी पत्नी फुलवंती रामदान के घर त्रियो रोड त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM। कोऑपरेटिव रोड मेलरोज में 81 साल की 81 years old श्रीमती कमलाबाई पुरुषराम पैदाइशी नाम बाऊ जो कमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके बेटे अंबाजी पुरुषराम के घर कोऑपरेटिव रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड लिस्यू सेबास्टोपोल में 58 साल के 58 years old श्री स्वराज राय सिंह सुकारी जो रावीन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे के भाई त्रिलोक कुमार सिंह सुकारी के घर रॉयल रोड लिस्या सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन काउंडीमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मामजल जान गुडलैंड में 75 साल की 75 years old श्रीमती उमावती बीपत पैदाइशी नाम उलाश जो उमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे के बेटे आदेश गुप्ता बीपत के घर मामजल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सोंगोलेट रोड सेबास्टोपोल में 81 साल की 81 years old श्रीमती कुलवंती लेकराज पैदाइशी नाम बाबूलाल जो कुलवंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे के बेटे रमेश दास लेकराज के घर सोंगोलेट रोड सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2 PM। सुल्फेरिनो नंबर एक वाकवा में 86 साल की 86 years old श्रीमती इंद्रावती हेमराज पैदाइशी नाम पलत जो ज्ञानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे के बेटे किरण हेमराज के घर सुल्फेरिनो नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो नंबर 5 की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। पांचू रोड स्टैनले रोजिल में 77 साल के 77 years old श्री दयानंद राम तोहल जो बालदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी बाद में उठाई जाएगी। गोविंदन लेन सिते मंगल कॉन्फ्लोरियाल में 79 साल की

0: 79 years old, Shrimati Munti Dasya, Shrimati Munti Dasya, पैदाइशी नाम रामजतन, जो देवरानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े बारह बजे, आज साढ़े बारह बजे इनके घर गोविंदन लेन सीते मोंगार को फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। फुटबॉल ग्राउंड रोड बेजू कप में 81 साल की 81 years old श्रीमती कुंती गुरुरोचन, श्रीमती कुंती गुरुरोचन, पैदाइशी नाम बिगना, जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज एक बजे, आज दोपहर बाद एक बजे इनके बेटे विकास गुरुरोचन के घर फुटबॉल ग्राउंड रोड बेजू कप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलोम्ब्र की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। ग्रांड पो रोड नोवेल फ्रांस में 68 साल के 68 years old श्री विजय कुमार जालिम, श्री विजय कुमार जालिम, जो विजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज ढाई बजे, आज ढाई बजे इनके घर ग्रांड पो रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल प्राइवेट क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट 2 PM। मेबर्ग में 68 साल की 68 years old श्रीमती मुनियामा वानापिली आपिया, श्रीमती मुनियामा वानापिली आपिया, पैदाइशी नाम लचेगाडू, जो वीना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे, आज 11 बजे इनके दामाद विश्वानंद रामाना के घर अलीगुड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 16, नंबर 16 प्रोविडेंस कोटे मिलिटेर में 89 साल के 89 years old श्री वालाइडों कुपामा, श्री वालाइडों कुपामा, जो सामी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 9:30 बजे, आज 9:30 बजे इनकी बेटी ब्रिंदा कुपामा के घर रूट 16 प्रोविडेंस कोटे मिलिटेर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडेमास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट 9 AM। आउट ऑफ लिविंग लेन कुवेंट दे लोरेट रोड क्यूपिप में 81 साल के 81 years old श्री फूल बिहारी नेकित सिंह, श्री फूल बिहारी नेकित सिंह, जो इंदर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे, आज 11 बजे इनके घर आउट ऑफ लिविंग लेन कुवेंट दे लोरेट रोड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाह की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोसलमा ओकिदे रोजबेल में 78 साल की 78 years old श्रीमती चंद्रानी नारी राम, श्रीमती चंद्रानी नारी राम, पैदाइशी नाम बंधु, जो धर्मों के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे, आज 10 बजे इनके बेटे सोना नारी राम के घर मोसलमा ओकिदे रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 10 AM। रॉयल रोड पिटी ट्रिविया में डॉक्टर पिपिन स्ट्रीट बुबासे में 68 साल के 68 years old श्री लक्ष्मी विजय किशुनदयाल, श्री लक्ष्मी विजय किशुनदयाल, जो शेखर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे, आज ढाई बजे मुरा फ्यूनरल रॉयल रोड पिटी ट्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोलट स्टेशन।
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty.

आज का दिन अन्ना के नाम सुनील शेट्टी आज 64 इयर्स के हो गए हैं। कभी साउथ मुंबई से रेस्टोरेंट चलाते थे, फिर बलवान मूवी के लिए बॉलीवुड में आ गए और ऐसा धमाका किया कि बस मेहनत ने उनकी यहाँ तक इस पोजीशन पे पहुँचा दिया। मैं हूँ आपके साथ पूनम और अब लेती हूँ इजाज़त। मेरे बाद आपको मिलेगा साथ विदिता का। इंजॉय कीजिएगा, फिर मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय।

0: लड़के को लड़की की तलाश है, लड़की को लड़के की तलाश है, भाई हमें तो आपकी तलाश है, कहाँ गए?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: A very good morning. सुबह के 7:05 हुए हैं और चलिए भाई विदिता आ गई हैं साथ देने के लिए आपके अपने प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती। भाई मॉर्निंग का हम क्या कहें, आज कुछ ज्यादा ही सर्दी नहीं लग रही है? लग रही है ना, चलो अच्छी बात है। जब गर्मी होती है तो कहते हो गर्मी लग रही है, अब सर्दी है तो सर्दी है। एंजॉय करो, एंजॉय करो, गर्मा गर्म चाय पकौड़े, नहीं कह रही हूँ, देखो हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो गर्मा गर्म चाय हो या गर्मा गर्म कॉफी हो, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर चलेगा, काम आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे 9 तक। और लेट मी टेल यू कि अभी हमारे इस प्रोग्राम में आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं, भाई गेम्स होंगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ होगा, हमारे जो दोस्त हैं विकास रामदनी स्टूडियो में कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ भागे रहे, मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स बोलना होता है, कहते नहीं नहीं स्पोर्ट्स करते करते स्पोर्ट्स बोलना होता है, तो चलो ठीक है, अभी बोला तू पहले बात करना बंद कर फिर तुझे भी भगाएंगे, तो इससे पहले कि वो मुझे भगाएं मैं चलती हूँ भागती हूँ अगले गाने के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।

0: 2.
1: Radio Musty.
2: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipia pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
3: Shopping, entertainment or family fun ka sabse bada festival. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI ML and LIC Mauritius, 12 से 16 अगस्त SBICC Pi, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12 टू 16 अगस्त SBICC Pi, मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड
4: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près d'où vibrer que tu as envie avec App Canal Plus inclus dans ton abonnement.
5: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
4: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport Channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month.
6: Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Hey guys, a very good morning. सुबह के 7:15 हुए हैं. मैं हूँ वेदिता, आपका साथ दे रही हूँ ऑन ट्यूजडे 11th of August. अगर आपका बर्थडे है सो हैप्पी बर्थडे टू यू. और अगर बाकी अगर कोई किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता है और उनको सरप्राइज करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट हमारा नंबर है 5491294. आप उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर हम तक पहुँचा सकते हैं. और बाकी जो लोग काम पर जाने के लिए निकल रहे हैं, ज़रा चेक करना चार्जर वगैरह भूले तो नहीं. पानी की बॉटल है ना साथ में? चलो ठीक है. और हमेशा कहती हूँ खाली पेट कभी भी घर से मत निकलना, कम से कम हैव सम वार्म वाटर और ड्राई फ्रूट्स खाना जरूरी होता है, हेल्दी रहोगे. ठीक है. और अभी क्या है ना कि सर्दी के इस मौसम में ज्यादातर लोगों को पकोड़े याद आते हैं गर्मा गर्म. मम्मी क्या करती है? वही करती है शाम को सुबह. मम्मी कुछ जरा हेल्दी वेल्दी खिलाया करो. ठीक है, चलिए इसके साथ वी गोना मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गाना जो आपके लिए लेकर आए हैं हम, थोड़ा सा आपको कूल फील कराने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती.
0: Oh God, one more remix. A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: रेडियो मस्ती।
1: ये वाला गाना कैसा लगा आपको? हाउ इज द सॉन्ग? ओके मिस्टर गणेशन रंगाडू, वेल अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। सो वेयर आर यू एक्चुअली? आप मॉरिशस में हो या कहाँ पे हो? अभी कौन से कोने में हो आप दुनिया के?
2: रेनियन आइलैंड
1: में। ऑलराइट, सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम रेडियो मस्ती टीम। एंड लेट मी टेल यू कि आपको मिल रहा है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर विच यू हैव टू कम एंड कलेक्ट। अनफॉर्चुनेटली आप रेनियन आइलैंड में हो, सो इट्स ओके, जब आप वापस आओगे तो ले लेना आप अपना जो वाउचर है। एंड चलिए, लोलो हाइपरमार्केट जो है वो रोज़ कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी का दिन स्पेशल हो, खास दो। तो आज आपका नाम आया है मिस्टर गणेशन। सो मिस्टर गणेशन, जाने से पहले कोई गाना नहीं गाओगे हमारे लिए आप? यू आर अ सिंगर राइट? कोई भी गाना, थोड़ा सा एनीथिंग। कोई बात नहीं, चलेगा।
2: जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा।
1: थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप नहीं तो कोई और आकर भी आपका जो वाउचर है वो कलेक्ट कर सकता है। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: मॉर्निंग बीट।
4: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
3: A good beat for your morning show.
5: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वेलकम टू रेडियो मस्ती. सुबह के 7:40 हुए. थोड़ी देर में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है हमारे दोस्त विकास रामदरी से, जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड से काफ़ी सारी खबरें लेकर हमारे लिए लेकर आ रही है. तो अगर आप अपने डेडिकेशंस, अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट हमारा नंबर, इट्स 5491294.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And yes, चलिए अब welcome करते हैं हम विकास रामधनी का. Very good morning to you, विकास.
4: Good morning, Verita. And a very good morning to all sports fans. ये स्पोर्ट्स बुलेटिन शुरू करते हैं हमारे लोकल बॉयज एंड गर्ल्स को सम्मानित करने के लिए. सप्ताहांत के दौरान, वीकेंड के दौरान मॉरिशस के हमारे सुपुत्रों और सुपुत्रियों ने खूब अपना अपना जलवा दिखाया. टू दे फॉन्स में आपको याद होगा नौवां स्थान पाकर किमलेकू दे पिना ने विश्व साइकिलिंग में मॉरिशस का नाम गर्व से ऊँचा किया, टॉप टेन में अपना नाम दर्ज करवा के. रेनियन टापू में त्रिस्तान आदि ने पहली बार टू दे फ्रांस जीता 18 साल की आयु में. रेमी फेये ने 28 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया मॉरिशस को एक बार फिर. तो वॉलीबॉल में हमारी अंडर 18 टीम ने इलाके के नेशंस कप में गोल्ड मेडल हासिल कर हमारी छाती को चौड़ा कर दिया. सो हार्दिक बधाई हमारे सभी लोकल बॉयज एंड लोकल गर्ल्स को. अब आगे सहर्ष हम कदम बढ़ा सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में इट्स ऑल लिवरपूल. अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस, ब्रिटिश इंडियन करोड़पति अमित भाटिया और उनके ससुर लक्ष्मी मित्तल अपने मेटल के साथ फेसबुक का सह स्थापक को ओनर एडुआर्डो सावेरिन सबके सब मिलकर एक कंसोर्शियम बनाकर लिवरपूल फुटबॉल क्लब का 30% हिस्सा 30% स्टेक खरीदना चाहते हैं. क्लब के मालिक फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप FSG ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बातचीत आगे बढ़ रही है. उल्लेखनीय है कि डेलॉयट

0: के फर्म के मुताबिक जनवरी 2026 में यानी इसी साल के जनवरी महीने में लिवरपूल पहली बार प्रीमियर लीग का टॉप अर्निंग क्लब बना था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए द रेड्स ने 703 मिलियन पाउंड के रिकॉर्ड रेवेन्यू का ऐलान किया था। ऐसे में द बेस्ट बिजनेसमैन को आकर्षित करेगा। और इस बीच ब्रैडली बाकोला आना चाहता है, लिवरपूल उसे लाना चाहता है, किंतु पेरिस सेंट जर्मेन बहुत पैसा मांगता है। खबरों के मुताबिक ब्रैडली बाकोला का दिल आ गया है लिवरपूल में। अब जिगर और नजर के साथ क्लब पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। पेरिस सेंट जर्मेन 140 मिलियन यूरो से एक भी पाई कम में टस से मस नहीं हो रहा है, पर उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। इसी पर सारी दुनिया कायल है और कायम भी। इधर रोनाल्ड अराउयो एफसी बार्सिलोना से लिवरपूल में आ गया है एक साल के लोन पर। इस सौदे में यदि लिवरपूल इस 27 वर्षीय 27 ईयर ओल्ड की तनख्वाह संभालेगा तो सीजन के आखिर में उसे स्थायी रूप से परमानेंटली खरीदने का भी ऑप्शन है, विकल्प है। दाम 55 मिलियन पाउंड। ट्रांसफर बाजार में एस्टन विला बैन म्यूनिख के पुर्तगीज इंटरनेशनल रोआओ पालिन्या को खरीदना चाहता है। 31 साल का है और टारगेट बना हुआ है एस्टन विला का वर्ल्ड कप में खेलने के बाद। अभी सूत्रों के मुताबिक पालिन्या ने भी अपनी हामी भरी है, वो आना चाहता है, पर अब बैन म्यूनिख को उसे बेचना पड़ेगा। अभी दो साल पहले ही बैन म्यूनिख ने उसे फुलहाम से 47.47 मिलियन पाउंड में खरीदा था। पालिन्या एस्टन विला का टारगेट बन गया है। फिर आर्सेनल अभी उसको लिंक किया जा रहा है एक विंगर के साथ। मिडफील्डर ब्रूनो गिमारेस को हासिल करने के बाद विनिशियस जूनियर मिस कर गया आर्सेनल। हो सकता है अब एंड्रिक उसके राडार में है, जो रियल मैड्रिड में आउट ऑफ फेवर बन गया है। कुछ नतीजे भी सुनिए। इंग्लिश लीग कप के फर्स्ट राउंड में कल प्लाइमूथ ने एक्सेटर को 2-0 से परास्त किया। आज यूईएफए चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के तीसरे क्वालिफाइंग राउंड के अंतर्गत कई मैच निर्धारित हैं, जिनमें ओलंपिक दे लियों वर्सेस स्पार्टा प्राग और स्टर्म ग्राज फेनेरबाचे आदि ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं। फ्रेंडलीज में आज रात यूवेंटुस का मुकाबला पालेर्मो से है, तो कल बुधवार की रात आर्सेनल वर्सेस कुम्बो, मैनचेस्टर यूनाइटेड टक्कर लेगी लीड्स यूनाइटेड से, डिपोचिवो वर्सेस रियल मैड्रिड, तो न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला कल ही एवर्टन से है। उल्लेखनीय है कि कल ही रात 11 बजे यूईएफए सुपर कप का फाइनल खेला जाएगा बिटवीन पेरिस सेंट जर्मेन एंड एस्टन विला। ये भी बता दें कि रविवार 16 अगस्त की शाम 6 बजे द एफए कम्युनिटी शील्ड यानी इंग्लिश फुटबॉल का पर्दा उठेगा। एफए कप विनर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस प्रीमियर लीग विजेता आर्सेनल। फिर शुक्रवार 21 अगस्त से प्रीमियर लीग का रेस ऑन। सुनते रहिए। टेनिस में विश्व नंबर एक यानिक सिनर सिनसिनाटी ओपन भी मिस कर जाएगा। अभी कनाडा ओपन चल रहा है तो उसमें भी वो अपना नाम वापस ले चुका है और सिनसिनाटी में भी नहीं खेलेगा, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान आकर्षित किया हुआ है यूएस ओपन में, जो इस महीने के आखिर में शुरू होने जा रहा है। सो कैनेडियन ओपन के लास्ट 16 राउंड में महिला वर्ल्ड नंबर वन अरीना सबलेनका हार गई। उसे हराया रशिया की एकतेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने 7-6, 4-6 और 6-4 से। ब्रिटेन का नंबर वन खिलाड़ी कैमरून न्यूरी भी हार गया। आज सुबह ही लड़कियों में ही इगा स्वियातेक ने स्नाइडर को 6-2 और 6-1 से परास्त किया। और क्रिकेट में बता दें कि अब पहला वार्म अप मैच 6 विकेट से जीतने के बाद भारतीय टीम अब अपना असली टेस्ट मैच खेलेगा इसी शनिवार से श्रीलंका के विरुद्ध। ये मैच शनिवार से शुरू हो रहा है। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद विकास रामधनी जी, आपको भी हमारी ओर से शुभ दिन।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

10:54 and you're listening to Radio Masti Vanita ke saath. Ye hai aapka morning beat. Good morning and welcome. चलिए इस गाने के साथ अब आगे बढ़ते हैं जो हमें लेके जाएगा 8 बजे के समाचारों की ओर.

आवाजा समाचार सुने जा। ग्रेट ब्रिटेन में काम करे हुला डू मोरिशन माहिर मोरिस में ऑफ्टाल्मोलॉजी क्षेत्र में तरक्की लाने के मकसद रखेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्क्रीनिंग करल जा सके ला बातें और माइक्रो इम्प्लांट से ग्लूकोमा के इलाज करल जा सकेला बातें दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोरिस के 10 इम्प्लांट्स दे लेबा कल ऊ पोटलुई में ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर लेबा। हई दिन मोरिस में बारिश कमती बा आने वाले महीनों में भी ऐसन ही हालत होलबा। मोरिस के मौसम भवन के मुताबिक अक्टूबर ले एलनीनो के असरात के चलत वर्षा कम होलबा। जलवायु परिवर्तन के माहिर के मुताबिक मोरिस के बारिश के पानी स्टॉक करे खातिर मिनी रिजर्वोयर जैसन हल पर काम करे के जरूरत पाती। कल दिन के 11:15 बजे से फेडरेशन दे ट्रावेलर्स यूनी के प्रतिनिधि आत्मा शांतो भूख हड़ताल करेला ऊ एम्प्लॉयज रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर दोबारा गौर करे के मांग करता। श्रमिक संघ प्रतिनिधि के मुताबिक ये कानून कर्मचारी लोग के पूरी हिफाजत नहीं करता, खासतौर पर निजी क्षेत्र में काम करे होला जना के। भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकान के प्रदान करे के योजना में तेजी लाए के ऐलान करेबा कर लेबा। 31 जुलाई 2026 ले न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट NSLD के करीब 2300 इकाई के परियोजना चलावल कर रहल बाते जौन 12 गो जगह पर बाते 1200 से जस्ती मांग के स्वीकार करल कर रहल बाते और करीब 300 परिवार के अपन घर मिलेला। विदेश में कोलंबिया में आपात स्थिति के घोषणा करल

कल रहल बाते कम से कम 111 जना के मौत के पुष्टि हो गल बाते, कई गो इमारत ढह गल बाते, जेकर से मरे होला जना के संख्या में बढ़ोतरी आल सके बाते। तो इ रहल समाचार। नमस्ते और सलाम।

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह के 8:08 हुए हैं. गुड मॉर्निंग. सो कहाँ तक पहुँचे? ऑफिस के लिए तो निकल ही गए होंगे. एंड डोंट फॉरगेट कि अभी भले ही सर्दी का मौसम है, यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. पानी की बॉटल अपने पास में रखना, हमेशा अपने साथ में रखना, और अगर हो सके तो थोड़ा वार्म वाटर भी अपने साथ रखना. ये ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है. आजकल तो जैसे बाहर जाओ तो फिर उसके बाद अच्छी सबकी यही हालत हो रही है. तो अपनी इस हालत पर थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा रहम रखना. और चलिए इसी के साथ इस टाइम कि हम मौसम कैसा रहेगा ये भी जान लें. तो आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए अगर आप तैयार हैं तो चलिए मिलते हैं सुमेरा से.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ऑन इट टू स्विनर्स.
4: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा. दिन के दौरान घने बादल होंगे और आज रात बादल घेराएंगे. पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में रह रहकर बारिश होगी. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके तेज झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा. 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पूर्व वाले लगूनों में. इसी वजह से वहां के लगूनों में न जाने की दरखास्त है. तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 21 से 24. साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आज सुबह 6:34 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:55 पर सूरज ढल जाएगा.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
6: On est tous Winners.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: एंड यस फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर समय हो गया है हमारे गेम का. यस, दिस गेम इज़ पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड. और आपको पता ही है कि कल से ये बिग डे शुरू होने वाला है, यानी कि हम बात करें उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. आप अगर हमारे सवाल का जवाब देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पर MBC और राजस्थान वर्क्स के साथ खेलने पर 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली. तो ये जो उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल है पावर्ड बाय SBI एंड LIC कल भाई

18 अगस्त को शुरू हो रहा है ये चलेगा 16 अगस्त तक यानी कि संडे तक एट SBI CCPI और मैं आपको बता दूं यहां पर 5 दिन का जो शॉपिंग एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन है आप इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल होम शॉपिंग होने वाला है एंटरटेनमेंट शोज होने वाले हैं मैजिक शोज फैशन शोज और स्पेशल अपीयरेंस होगा बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का जी हाँ धर्मेश सर का और आपको तो पता ही है कि वो जो है होस्ट करते हैं डांस के जो कंपटीशंस होते हैं तो वो आ रहे हैं यहाँ पर इस डांस कंपटीशन को जज करने के लिए साथ में कानमा का शो होने वाला है ब्लड डोनेशन कैंप फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड तो आपको मुझे ये बताना है जी हाँ आपको मुझे ये बताना है कि वहाँ पर जो लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है इंडियन आइडल का एक सिंगर वहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं जी हाँ जो लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है ये एक इंडियन आइडल सिंगर वहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं उनका नाम आपको मुझे बताना है 1549 1294 पूरे नाम और पते के साथ

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: शुरू जी, आपके लिए हमने सवाल किया था, हमने आपसे पूछा था कि ये जो उत्सव इंडिया मर्शस शॉपिंग कार्निवल चल रहा है, अभी चलने वाला है 12 अगस्त से 16 अगस्त तक एट एसवीआईसीसी पाई, तो यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस किस इंडियन आइडल सिंगर के साथ हो रहा है? और सही जवाब है यहाँ पर परिणय जैन जी। हाँ, इन्होंने लास्ट टाइम भी परफॉर्म किया था, बहुत प्यारा गाते हैं ये अपने ग्रुप के साथ, एंड ये परफॉर्मेंस मिस नहीं करना चाहिए आपको, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? उत्सव इंडिया मर्शस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी। जी हाँ, 12 अगस्त से ये चलेगा 16 अगस्त तक एट एसबीआईसीसी पाई, और अगर आपको जाना है वहाँ पर शॉपिंग के लिए तो डेफिनेटली सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस जैसे मैंने कहा कि इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन के साथ होगा, वहीं पर स्पेशल अपीयरेंस होगा बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, ये तो मिस नहीं करना है। जी हाँ, कानमा का शो, ब्लड डोनेशन कैंप, फूड फेस्टिवल, फैशन शो, मैजिक शो, एंटरटेनमेंट शोज तो होंगे ही होंगे भाई। इंटरनेशनल होम शॉपिंग जो चल रहा है ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड, चलिए जानते हैं कि विनर कना है कौन। तो यहां पर सही जवाब देकर विनर बने हैं चारवीर सिंह शिवनारायण फ्रॉम क्यूपिप। कंग्रेचुलेशंस, आपने जीता है 4 एंट्री टिकट्स एंड व्हाट फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली, और इसे कलेक्ट करने के लिए आपको आना पड़ेगा एमबीसी अपने आईडी कार्ड के साथ सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: चलिए जी, एक और गेम लेकर आ गई हैं। यस, यू बीइंग सो पैम्पर्ड टुडे। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी पैम्पर्ड करने के लिए लेडीज तैयार हो जाइए। क्या पता घर बैठे आप घर के काम काज में लगे हैं, कहीं झाड़ू पोछा खाना बना। अरे छोड़ो, बैठो, सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो और आपको ये इनाम मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि मेरे का काम का, अरे आपके काम का ही है। ये जो गेम है आपके लिए हम लेकर आए हैं प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक की तरफ से। और आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 40 मिनट्स हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक। तो आप एंजॉय कर सकते हैं डीप क्लेंजिंग, जेंटल एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन सीरम इन्फ्यूजन एंड हाइड्रा ग्लो मास्क, ऑल डिजाइन टू लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश्ड, स्मूथ and beautifully radiant. Your glow starts at Prana. And yes, सोचो जब मुझे बोलते हुए इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो जब आप जाकर ये जो हाइड्रा ग्लो फेशियल है कराओगे तो आपको कैसा लगेगा। बोल के अच्छा लगा मुझे। तो चलो, अभी मैं ऐसे ही तो नहीं दे सकती, मुझे सवाल तो करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि मिस वर्ल्ड 2017, जी हाँ, मिस वर्ल्ड 2017 मनुश्री चिल्लर एक फिल्म के साथ, एक बॉलीवुड के फिल्म के साथ उन्होंने अपना करियर जो है बॉलीवुड में स्टार्ट किया था। आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी मूवी है। जी हाँ, ये फिल्म जो है 2024 में आई थी। आपको मुझे बताना है मनुश्री चिल्लर ने बॉलीवुड के किस मूवी के साथ अपनी फिल्मी करियर का शुरुआत किया था इन 2024। आपको जवाब देना है 5491294 पे पूरे नाम और पते के साथ।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलिए जी, यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था, बहुत ही आसान सा सवाल था। हमारी जो बिस वर्ल्ड है 2017 की, मनुष्य छिल्लर, वो एक बॉलीवुड मूवी के साथ उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। और मैंने आपसे पूछा था, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए हैं। किसी ने कहा ऑपरेशन वैलेंटाइन, और साथ में उन्होंने कहा बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वेल सम्राट, पृथ्वीराज, वैसे सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया बॉलीवुड में। जब मैंने बोला 2024 की इस मूवी का नाम बताइए, इट्स बड़े मियाँ छोटे मियाँ। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन है जिन्होंने सही जवाब देकर लकी ड्रॉ में अपना नाम बस उछाला और जो गिफ्ट है उनकी झोली में आ गिरा। तो सही जवाब तो सबने दिया, लेकिन

यहां पर विनर बनी है राखी अनमोल फ्रॉम एबेन. कांग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. आपको मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है 40 मिनट हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक. भाई आप जाकर यहां पर एंजॉय कर सकते हैं अपना ये जो फेशियल है, क्योंकि यहां पर आप एंजॉय करेंगे डीप क्लेंजिंग, डेंटल एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, सीरम इन्फ्यूजन और हाइड्रा ग्लो मास्क. सब डिज़ाइन किया गया है आपकी स्किन के लिए, जो कि उसके बाद फील करेंगे रिफ्रेश्ड, स्मूथ एंड ब्यूटिफुली रेडियंस. सो योर ग्लो स्टार्ट्स एट प्राणा और आपको मिल रहा है ये मौका कि आप जाकर वहाँ पर ये ग्लो कर सके, ये फेशियल कर सके. तो चलिए राखी, आपको आना पड़ेगा MBC टू, नहीं आपका जो वाउचर है आपको पोस्ट कर दिया जाएगा. थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस गेम में पार्टिसिपेट किया. और बाकी हमारे दोस्तों को यही कहेंगे कि आपको बाकी फिर से मौका मिलेगा जीतने का, घबराएगा नहीं. और आपको भी देख कर जैसे ही आप फेशियल करके आएंगे लोग कहेंगे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त.

हाव फेथ, जो आज डिफिकल्ट लग रहा है जरूरी नहीं कल भी वैसा ही रहे। बस ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। जो चीज आपके कंट्रोल में है उसके लिए एफर्ट करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे यूनिवर्स पे, भगवान पे छोड़ दो। जस्ट कीप गोइंग, कीप बिलीविंग कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी लाइफ में आंसर्स जो है ना इमिडिएटली नहीं मिलते, डिले, सेटबैक्स, और कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन जब आप यकीन रखते हो, विश्वास रखते हो इन द प्रोसेस, तो हर वो टफ मोड जो होता है ना एकदम पेशेंस के साथ उसे आप हैंडल कर लेते हो और सब कुछ सही हो जाता है। देखो मुझे अभी सब आंसर्स नहीं पता, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो इसीलिए लाइफ में हमेशा अपना बेस्ट देना और बिलीव करना कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, एंड ट्रस्ट मी सब ठीक हो जाता है एंड में।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: So, my dear friends, time for me to say bye-bye now. Thank you so much. आप हमारे साथ जुड़े रहे आपके अपने रेडियो मस्ती पर और ये है आपका मॉर्निंग बीट विनीता के साथ. रोज मॉर्निंग में हमारी कोशिश रहती है आपके चेहरे पे एक स्माइल ले आए, आपको खुश कर दे. आई जस्ट होप कि हमारे गानों ने वो कमाल तो ज़रूर किया होगा. चलिए अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द. जी हाँ, बहुत जल्द, यानी कि कल मॉर्निंग में 7 बजे. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं. बाय-बाय, टेक केयर. एंड याद रखिएगा, आप चेहरे पे कितना भी मेकअप क्यों ना लगा लें, जब तक स्माइल नहीं होगा ना तो चेहरा अच्छा अच्छा खिला खिला नहीं लगता. तो इससे चेहरे को ऐसे ही मुस्कुराते रखना और हमेशा लाइफ में खुश रहना.

0: ठीक है, 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है सुमैरा अकबर अली, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते।
1: नमस्कार आदाब। ग्रेट ब्रिटेन में काम करने वाले 2 मुर्शन माहिर मुर्शस में ऑफ्थाल्मोलॉजी क्षेत्र में तरक्की लाने का मकसद रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्क्रीन की जा सकती है और माइक्रो इम्प्लांट से ग्लूकोमा का इलाज भी किया जा सकता है। दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मुर्शस को 10 इम्प्लांट्स दिए और कल उन्होंने पोटली में ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात भी की। इन दिनों मुर्शस में बारिश कम है, आने वाले महीनों में भी ऐसी ही हालत होगी। मुर्शस के मौसम भवन के मुताबिक अक्टूबर तक एल नीनो के असरात की वजह से वर्षाएं कम होगी। जलवायु परिवर्तन के माहिरों के मुताबिक मुर्शस को बारिश का पानी स्टॉक करने के लिए मिनी जलाशय जैसे हल पर काम करने की ज़रूरत है। कल दिन के 11:15 बजे से फेडरेशन दे ट्रावाई यूनी के प्रतिनिधि आत्मा शांतो भूख हड़ताल पर हैं। वो एम्प्लॉयज़ रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर दोबारा गौर करने की मांग कर रहे हैं। श्रमिक संघ प्रतिनिधि के मुताबिक ये कानून कर्मचारियों की पूरी हिफाजत नहीं करते हैं, खासतौर पर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की। कर्मचारियों की बेहतर कार्य शर्तों के सिलसिले में बात करने के वास्ते निजी सेक्टर के कुछ मालिकों की नामंजूरी पर भी आत्मा शांतो ने बात की। बेलोम्ब्र के एक होटल में बलात्कार की कोशिश संबंधी एक मामले का भी उन्होंने उल्लेख किया। आत्मा शांतो के अनुसार घटना के 3 दिन बाद उस विदेशी कर्मचारी को वापस अपना देश लौटना पड़ा और शक्की गुनहगार ने उससे 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर चुप रहने की मांग की। भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकानों को प्रदान करने की योजना में तेजी का ऐलान कर रहा है। 31 जुलाई 2026 तक न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट NSLD की करीब 2,300 इकाइयों की परियोजना चलाई गई जो 12 जगहों पर है। 1,200 से ज़्यादा मांगों को स्वीकार किया गया है और करीब 300 परिवारों को अपने नए घर की चाबी मिली है। और जहां तक NHDC के मकानों की बात है, 5 परियोजनाओं के तहत 185 इकाइयों पर काम किया जा रहा है और इन इकाइयों के लाभार्थियों की अलग अलग कहानी है जिन्हों बरसों बाद एक छत नसीब हो रही है। विदेश में कोलंबिया में भूकंप के चलते आपात स्थिति की घोषणा की गई है और कम से कम 111 लोगों की मौत हुई है। ये कहा जा रहा है कि कुछ और बहुत सी इमारतें ढह गई हैं जिसकी वजह से मौतों की संख्या बढ़ सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।

0: कैसे जी।
1: वैसे हर रोज हमें मौका मिलता है टू लिव अप टू अवर ओन एक्सपेक्टेशन एंड जो आप कामना करते हैं, जो आप विश करते हैं, यही तो मैनिफेस्ट हो जाती है हमारी जिंदगी में। तो जीना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। अरे पता है कि कब जीना आसान हो जाता है?

0: जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है अपने भले के लिए हो रहा है। आतिफ असलम की आवाज के साथ हम शुरुआत करते हैं विद योर मस्ती मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 9:00 अभी 14 मिनट हुए हैं। मनीष्मा का साथ रहेगा टिल 12 बजे।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
0: चलिए कुछ रोमांटिक ट्रैक्स, कुछ रिलैक्सिंग सॉन्ग। आप ये जो जर्नी है मॉर्निंग से लेकर शाम तक, थोड़ा सा आपको एकम्पनी करने के लिए गेट द बेस्ट ट्रैक्स।

Sofa for you, अरिजीत सिंह की आवाज में, निकिता गांधी की आवाज में, a wonderful track just to say to you कि यार जिंदगी में हमेशा एक ना कोई नूर होना ही चाहिए. जी हाँ, चाहे वो आपके

पेरेंट्स क्यों ना हो, कोई दोस्त क्यों ना हो, या हस्बैंड और योर वाइफ, इंस्पिरेशन मिल जाती है हर रोज उठने को टू फाइट लाइफ, टू फाइट ऑल द बैटल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती है दोस्तों. किसने कहा कि आसान होती है, नहीं आसान होती है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है. एंड वी जस्ट हैव टू यू नो बी हैप्पी एंड कंटिन्यू द लाइफ, कंटिन्यू द जर्नी, व्हाट यू से. ओके, आप कहते हैं तपन्ना की तमन्ना, ये है 2.0 वर्जन. आई लव दिस सॉन्ग, एंड जब से ये गाना निकला है ना मेरे दिल के बहुत करीब हो गया. आप भी सुन लीजिए और मैसेजेस की बारी आएगा यहाँ पर 5591294 पर भेजते रहिएगा, यहाँ पर थोड़ी देर में पढ़ेंगे आपके मैसेजेस.

0: Postcode RM2 Radio Musti.
1: जी यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं विद अवर हॉरोस्कोप विद मेष राशि. तो चलिए सुनिएगा.
2: एरीज मेष राशि.
1: तो आज एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों हाई रहेंगे. काम में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो काम रहकर हैंडल करेगा. और यहाँ पर आपके लिए लकी नंबर 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज पैसों से जुड़े कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके सामने आ सकता है और फैमिली के साथ एक प्लेजेंट मोमेंट भी आपके मूड को और भी रिफ्रेश करा देगा. लकी नंबर 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल रहेंगे और किसी से हुई एक सिंपल से कन्वर्सेशन ना फ्यूचर में यूजफुल अपॉर्चुनिटी बना सकती है. और आपके लिए लकी नंबर 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज अपने इमोशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन दे. घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा और किसी अपने से दिल की बात करने का मौका मिलेगा आपको. लकी नंबर 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज लीडरशिप दिखाने का दिन है. वर्क प्लेस पर आपके आइडियाज को इम्पोर्टेंस मिलेगी. कॉन्फिडेंस रखें लेकिन टीम वर्क को भी वैल्यू दें. लकी नंबर 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज प्लानिंग से बहुत फायदा होगा आपको. जो काम काफी टाइम से पेंडिंग था उसे कंप्लीट करने का ये परफेक्ट चांस मिल सकते हैं आज आपको. लकी नंबर 4.
2: लीब्रा तुला राशि.
1: रोमांस और रिलेशनशिप्स के लिए दिन प्रॉमिसिंग है. किसी स्पेशल इंसान की तरफ से स्वीट सरप्राइज या पॉजिटिव मैसेज भी मिल सकता

0: है तो इंतजार करिएगा। लकी नंबर नंबर 7
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज अपनी इंस्टिंक्ट को सीरियसली लें। किसी फाइनेंशियल या प्रोफेशनल मैटर में डिसीजन लेने से पहले डिटेल जरूर चेक करिएगा। लकी नंबर नंबर 8
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: आज रूटीन से कुछ अलग करने का मन करेगा। न्यू आइडियाज, न्यू नए लोग, नए एक्सपीरियंस के साथ आप लकी महसूस करेंगे और ये सारे जो एक्सपीरियंस होंगे ना अच्छा ही साबित होगा। लकी नंबर नंबर 3
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा आप सभी को। करियर में स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और आपके जो डेडिकेशन सीनियर के नजरों में आ सकती हैं। सो बी केयरफुल एंड बी कॉशियस आल्सो, लेकिन अपने जो आइडियाज हैं सामने रखो दिल खोलकर। लकी नंबर नंबर 10
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: लास्ट नहीं कुंभ राशियों के लिए क्रिएटिव थिंकिंग आज आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी। किसी दोस्त या कलीग से मिला एक सजेशन एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप क्या सुन रहे हैं और बी वेरी वेरी केयरफुल आल्सो व्हाट यू आर टॉकिंग आल्सो। लकी नंबर नंबर 11
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज अपने इनर पीस को प्रायोरिटी दी, हर बात को ओवरथिंक ना करें, उसके बजाय आप ना जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करें, जो कंट्रोल में नहीं है उसको चेंज करने की कोशिश भी ना करें, ये है जिंदगी। ओके जी, लकी नंबर नंबर 7 एक्सेप्ट द वे इट इज। सो दैट्स योर हॉरोस्कोप। अभी के लिए आई एम गोना प्ले पहला नशा 2.0 फॉर यू। आई होप यू हैविंग वंडरफुल टाइम। लेकिन ये जो 90s वाला सिलेक्शन जो आप पूछ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ये सेकंड आवर में मिलेगा आपको 10 बजे के बाद, तो स्टे वेल कनेक्टेड। थोड़े थोड़े 90s चलाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए आगे थे तो पहला नशा 2.0 दिस इज अ न्यू वर्जन। एंजॉय
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

9:50 हुए हैं, आप जुड़े हैं आर इनटू रेडियो मस्ती के साथ यहाँ पर। हाय, कैसे हो? आई वांट टू विश जी जी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज फ्रॉम साली। प्रिया है, नीना दीदी, प्रतिमा भाई, जिनी, अनु, अंशुष एंड आशिका, अविश, अनिश्चय, अरिशा एंड ऑल दोस ट्यूनिंग टू आर इनटू रेडियो मस्ती। आकाश भी है यहाँ पर, इजी लैंड ऑल्सो एंड ऑल फैमिलीज ऑल्सो यहाँ पर। हाय, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग माई लवली वाइफ आशा सेलिब्रेटिंग birthday today, best wishes from honey Arvind and daughter Janvi from Ernest Florent. Have a wonderful time ahead.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सिलेक्शन. हाय मनीषमा, टुडे इज डबल पार्टी. इट्स प्रीति बिरजू का जन्मदिन. हैप्पी बर्थडे टू प्रीति. हेलो जेक, न्यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय कलीग्स. रोशनी, शिरीन है, शहजादी है, विकास. लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती राइट नाउ फ्रॉम प्रीति ऑफ कैचे मिलिते टीम. यहाँ पर समारा जो की पसंद कर रहे हैं. इट्स फ्रीजिंग हियर एंड योर सिलेक्शंस आर एक्चुअली bringing some lights. अरे दिल को छू लेने वाली बातें करते हो. यहाँ पर special message मिला है कि आज किशन लोथन का जन्मदिन है. Happy birthday, आप पूरे 26 साल के हुए हैं. और खास बात ये भी है कि आज आपके मौसा का जन्मदिन भी है. So very very happy birthday goes out to मौसा स्वामी जड़ी, जो प्यार से उन परिवार वाले आपको बुलाते हैं. आज पूरे 59 years के हुए हैं और आप रहते हैं सेबास्टोपोल लेसी. और दोनों को यानी कि आज किशन और रमोसा स्वामी का जन्मदिन है. तो स्पेशल विशेस कमिंग फ्रॉम विश्वानंद जी और ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को. ओके जी, एंजॉय कीजिएगा अगला गाना एंड मिलते हैं अगले आवर में.
0: मॉर्निंग बीट.
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.
0: A good beat for your morning show.
1: RM2, Radio Musty, in the

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 8:10 a.m. आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ सुमेरा. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार आदाब. लिसाली में इन दिनों एलिफेंट सील है, इसीलिए मत्स्य मंत्रालय जनता से मांग करता है कि कोई भी उसके करीब ना जाए. एक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जानवर बीमार है, ना जख्मी है, ना ही उसने अपना रास्ता खोया है. अक्सर ये एलिफेंट सील मॉरिशस के साहिलों तक आ जाते हैं और फिशरीज एक्ट 2023 के तहत वे सुरक्षित हैं. जो भी उस एलिफेंट सील को परेशान करेगा, छूने की कोशिश करेगा या उसे वहाँ से हटाएगा तो उसे 25 मिलियन रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है. अधिकारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. कल दिन के 11:15 से फेडरेशन ऑफ ट्रैवलर्स यूनियन के प्रतिनिधि आत्मा शांतो भूख हड़ताल पर हैं. वो एम्प्लॉयज रिलेशन एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट पर दोबारा गौर करने के लिए मांग कर रहे हैं. श्रमिक संघ प्रतिनिधि के मुताबिक ये कानून कर्मचारियों की पूरी हिफाजत नहीं करते हैं, खासतौर पर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की. कर्मचारियों की बेहतर कार्य शर्तों के सिलसिले में बात करने के वास्ते निजी सेक्टर के कुछ मालिकों की नामंजूरी पर भी आत्मा शांतो ने बात की. बेलोम्ब में एक होटल में बलात्कार की कोशिश संबंधी एक मामले का उन्होंने उल्लेख किया. आत्मा शांतो के अनुसार घटना के 3 दिन बाद उस विदेशी कर्मचारी को वापस अपना देश लौटना पड़ा और शकी गुनहगार ने उसे 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर चुप रहने की मांग की. इन दिनों मॉरिशस में बारिश कम है, आने वाले महीनों में भी ऐसी ही हालत होगी. मॉरिशस के मौसम भवन के मुताबिक अक्टूबर तक एल नीनो के असरात की वजह से वर्षाएं कम होंगी. जलवायु परिवर्तन के माहिरों के मुताबिक मॉरिशस को बारिश का पानी स्टॉक करने के लिए मिनी जलाशय जैसे हल पर काम करने की ज़रूरत है. विदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में हमास के निरस्त्रीकरण संबंधी योजना के लिए शांति परिषद के रोड मैप को ठुकराया है. और उधर कोलंबिया में मरने वालों की संख्या 132 तक पहुंच गई है. भूकंप की वजह से आपात स्थिति की घोषणा की गई है, बचाव कार्रवाई जारी है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. बानान क्लूनी में 69 साल के 69 years old श्री देवानंद रघु, जो राजेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. और जो एग्रीकल्चर क्यूपिप के पूर्व कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 10 बजे इनके बेटे सत्यम शर्मा रघु के घर बानान क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लूनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 10 AM. एवेन्यू ओरिए कैथोबोन में 48 साल के 48 years old श्री उमेश रापा, जो रवि के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज ढाई बजे इनके भाई विनय शिरापा के घर एवेन्यू ओरिए कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोरेगाउ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 2 PM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.

0: दिस वन गोज़ टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन जो अभी घर पे है, कह रहे कि यार आफ्टर ब्रेकफास्ट खाने में क्या बनाए ये तो प्लान होता है। वैसे आई गेट द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस, आपके जो भी प्लान है कंपनी करने के लिए घर में बैठे बैठे आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, बॉलीवुड फिटनेस भी कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन बी हैप्पी, बी यू नो ऑलवेज स्माइलिंग, बी पॉजिटिव ऑल्सो। यहाँ पर इट्स योर टाइम, सो एंटरटेन करो खुद को और हमारे साथ यूँ ही साथ निभाते चलो। 10:08 अभी 8 मिनट हुए हैं।
1: RM2 Radio Musti

0: दर्शन रावल का ये गाना स्पेशली फॉर ऑल दोस्त जो कि अभी काम कर रहे हैं, वैसे ऑफिस से चाहे हो या फिर कहीं पर आप ड्राइव करके जा रहे हो, ऑल द ड्राइवर्स, ऑल दोस्त जो अभी बस काम कर रहे हैं, तो आपको कहना चाहते हैं बॉन कुहार, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

0: खूबसूरत फीलिंग होती है ना जब हमारे दिल में किसी खास इंसान की जगह बन जाती है. वैसे दिस वन गोज़ आउट टू ऑल योर लव्ड वंस. अभी के लिए लेते एक छोटे से ब्रेक. सूरज की बाहों में आ रहा है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी से. हियर वी गो.
1: ओएमजी रेडियो मस्ती. शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे.

0: तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC भाई मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड
1: RM2
2: रेडियो मस्ती

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: ओके जी, इस सीजन फैशन में कंफर्ट के साथ साथ एलिगेंस की बात करें. वैसे व्हेन वी टॉक अबाउट फैशन, वी टॉक अबाउट एलिगेंस, सिर्फ कपड़े पर डिपेंड होता है ये ना, कलर्स पर भी डिपेंड होता है. कलर्स की बात करें तो सॉफ्ट पेस्टल अर्थी टोन्स और क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन बहुत ही वर्सेटाइल है. और अगर आप ट्रेडिशनल लुक को अपनाना चाहते हैं तो एक सिंपल सी कुर्ती विद स्ट्रेट पैंट्स, झुमका और कलरफुल दुपट्टा परफेक्ट ग्रेसफुल लुक बना देता है. और एक गोल्डन फैशन रूल मैं आपको कहना चाहती हूँ, ना सिर्फ कपड़े पर डिपेंड होता है, चाहे आप नए कपड़े पहन रहे हो या पुराने कपड़े, लेकिन उसको कैसे स्टाइल किया जाए और कैसे पहना जाए और वैसे आपको किसी और को देख कर यू डोंट फॉलो द फैशन ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा. जो आउटफिट आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करवाए वही आपका बेस्ट फैशन स्टेटमेंट है. क्या कहते हो आप? वैसे दिस वन गोज आउट टू ऑल दोज मेरी जो आंटीज,

0: की उम्र के लोग हैं, जो हमारी दीदी की उम्र के लोग होते हैं, वैसे इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट अ ट्रेडिशनल लुक जो सीधा पैंट होता है, एक कलरफुल दुपट्टा और साथ में झुमके ना भूले, यस यू विल फील सो गुड इन योर ओन स्किन।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

कमाल की चीज होती है ना ये हमारी फीलिंग, किसी के होने या ना होने से कितना फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में। कभी कभी हम एडमिट नहीं करना चाहते लेकिन फर्क तो पड़ता ही है ना, ये बस दिल की बात होती है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Well, you can play with MBC and Rajasthan Works and win exciting prizes right now, right away. ये है नंबर पार्टिसिपेट करने के लिए. सवाल देंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा on 549912 for per stand a chance to win 4 entry tickets and a food coupon from Jane's Little India for the Shahi Thalia the Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI and LIC. तो सवाल ये रहा, क्या बता सकते हैं ये किस डेट से शुरू होगा और कब तक चलने वाला है? The उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. जी हाँ, फ्रॉम विच डेट टिल विच डेट? ऑन दिस नंबर 549912 पर भूलिएगा नहीं अपने फुल नेम और पते के साथ आपको भेजना पड़ेगा, तभी तो आप क्वालिफाई रहेंगे ना. जी हाँ, बताइए फटाफट ये मैसेज भेजिए कि फ्रॉम विच डेट टिल विच डेट. आ रहे हैं मैसेजेस. एक अल्लाह की ड्रॉ करने के बाद हम आते हैं लेकर विनर का नाम.

0: चिरा के दिल मेरा ब्यूटीफुल सॉन्ग कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों की शायद वैसे थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल फॉर यू टू बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड विन चार एंट्री टिकट्स एंड अ फुट कूपन। यहाँ पर आपको बताना था कि राजस्थान वर्क्स लिमिटेड का ये जो उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल है पावर्ड बाय SBI एंड LIC एजाज फ्रॉम विच डेट टिल विच डेट, तो बताती हूँ यहाँ पर उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC फ्रॉम द 12th of August 2026 टिल द 16th of August 2026 एट SBI CC Pi फ्रॉम 10 AM टिल 9 PM। वैसे कंग्रेचुलेशंस गोज आउट टू अ लकी विनर, उनका नाम है पूनम जो रहती है फ्लैग। कंग्रेचुलेशंस पूनम जी, ये कर तो ये चार टिकट्स आपके नाम हो गए हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा एंड पिकअप योर टिकट्स एंड वन फुट कूपन फ्रॉम द जेंट्स लिटिल इंडिया फॉर द शाही थाली। जी हाँ, वहाँ पर आप एंजॉय कर सकेंगे 5 दिनों तक शॉपिंग एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन फीचरिंग इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शो लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणीति जैन स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर कानवा शो वहाँ पर होंगे ब्लड डोनेशन कैंप फूड फेस्टिवल एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज by Event Works Limited and the game is powered by Rajasthan Works Limited. Thank you so much for participating. Have a good day. Hey,
1: RM2 Radio Musti.
2: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de jus de fruits Les Vergers de la Bourdonnée à 122,95 € et les 320 ml de Vaseline Body à 219,95 €. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
3: On est tous Winners!
1: RM2
4: Radio Mustang.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दस बजकर अभी 55 मिनट होने को है। अखिल सचदेवा की आवाज में तुम मिले यार, आपकी और आपकी मॉर्निंग को और भी मजेदार बनाने के लिए।

0: सुनते हुए के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ सुमेरा नमस्कार आपको
1: नमस्कार आदाब स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास में बाधाएं उत्पन्न करने वाले लोगों को अगर काम नहीं करना है तो वे अवकाश ले सकते हैं कहा प्रधानमंत्री ने सरकारी नेता जनता की बेहतर सेवा के लिए नई तरक्कियां लाने के पक्ष में हैं ग्रेट ब्रिटेन में काम करने वाले दो मोशन माहिर मॉरिशस में ऑफ्टाल्मोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की लाने का मकसद रखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्क्रीनिंग की जा सकती है और माइक्रो इम्प्लांट से ग्लूकोमा का इलाज किया जा सकता है दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मॉरिशस को 10 इम्प्लांट्स दिए कल उन्होंने पोर्ट लुई में ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से एक रस्मी मुलाकात की इन दिनों मॉरिशस में बारिश कम है आने वाले महीनों में भी ऐसी ही हालत होगी मॉरिशस के मौसम भवन के मुताबिक अक्टूबर तक एल नीनो के असरात की वजह से वर्षाएं कम होंगी जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के मुताबिक मॉरिशस को बारिश का पानी स्टॉक करने के लिए मिनी रिजर्वॉयर जैसे हल पर काम करने की ज़रूरत है लिसादीन में इन दिनों एलिफेंट सील अभी भी मौजूद हैं इसलिए मत्स्य मंत्रालय जनता से मांग करता है कि कोई भी उसके करीब ना जाए एक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा कि जानवर बीमार है ना जख्मी है और ना ही उसने अपना रास्ता खोया है अक्सर ये एलिफेंट सील मॉरिशस के साहिलों तक आ जाते हैं और फिशरीज एक्ट 2023 के तहत सुरक्षित है जो भी उस एलिफेंट सील को परेशान करेगा छूने की कोशिश करेगा या उसे वहां से हटाएगा तो उसे 25 मिलियन रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 साल कैद की सजा हो सकती है अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और विदेश में कोलंबिया में मरने वालों की संख्या 130 के पार तक पहुंच गई है आपात स्थिति की घोषणा की गई है एक वृहद बचाव कार्रवाई शुरू की गई है कई इमारतें ढह गई हैं इसी वजह से मौतों की तादाद बढ़ सकती है तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए Avenue Kobidjo Montidame, 90 साल की 90 years old, Bibi Rabika Rampat, Bibi Rabika Rampat, पैदाइशी नाम बकोराली, जो हाफेज के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं, जनाजा आज 2:30 बजे इनके शहर, जनाब अब्दुल सातो रामपत के घर Avenue Kobidjo कोबिजो मोचिदा से उठाकर दफनाने के लिए मेजिन कौंडिमास का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे At 2:30 PM, शोक में दुबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है
2: RM2
3: Radio Musti
2: Morning Beat
4: Oh God, one more remix
2: A good beat for your morning show
3: RM2 Radio Musti in the mix

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

बात है अभिजीत एंड अलका याग्निक की आवाजों के साथ छोटी छोटी सपनों में। वैसे आप कहाँ खोए हो, कहाँ पहुंचे हो, क्या कर रहे हो, बता ही दो। यहाँ पर 5:09 and 1:294 पर वेलकम दिस लास्ट आवर। वैसे यहाँ पर नितिशा भी आ गई है स्टूडियो में, ऊपर से वो तो तैयारी कर रहे हैं अपने 12 से 2 के बीच। इतनी सारी प्यारी गाने आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए, अभी के लिए चंदा की डोली में आप ना ऐसे ऐसे गाने मत चला रही आपके लिए, ताकि आप साथ में गा भी सको और आप झूम भी सको, और हर एक टेस के लिए, हर एक एरा के लिए कुछ ना कुछ ऐसे से चुनकर गाने ला रहे हैं आपके लिए। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं मनीषमा, आपकी सखी, आपकी दोस्त, टिल 12 बजे। RM2 Radio Musti।

11:26 हुए हैं आप जुड़े हैं आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ। वैसे ऐसे खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स का जब साथ होता है तो दिल खुश ही हो जाता है। हाँ, और हमारे जो मॉर्निंग टिल आफ्टरनून का टाइम होता है अच्छे से ही बीत जाता है। चलिए रिलैक्स होकर अपना ये जो लंच टाइम है एंजॉय कीजिएगा। बोन अपेटी।

छुप छुप के द सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द मूवी बंटी और बबली. सो उन्होंने गम की आवाज में महालक्ष्मी अय्यर भी साथ में आते हैं छुप छुप के. यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस. कभी कभी लाइफ में हर सिचुएशन को जवाब वर्ड्स से नहीं देना जरूरी होता है. कभी कभी साइलेंस भी एक पावरफुल आंसर हो जाता है. जब कोई आपसे गुस्से में बात करे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा साइलेंट रहे सिचुएशन को काम हो सकता है. जब इमोशंस हाई होते हैं ना तब साइलेंस हमें सोचने का टाइम देता है क्या बोलना है क्या नहीं, कब बोलना है कब नहीं. इस चुप्पी का मतलब वीकनेस थोड़ी ना होता है. समटाइम्स इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल मैच्योरिटी एंड विजडम. मेरी मम्मी तो हमेशा कहती है कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी अपने पीस को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये आप पर निर्भर होता है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, थोड़ा सा साइकिल होना अपनी जिंदगी में या फिर थोड़ा सा कॉलमनेस.

वैसे यहाँ पर आपके मैसेजेस जो हैं ऑन 5899124। हेलो लवली, ललिता जी चंदा कैसे हो आप, एंजॉय कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को? तिशारी ना सीता राहुल मालती रुक्की रवि अनु और लीला ललिता इन जितने परिवार और लवों से ये मैसेज आया है, विशिंग वेरी हैप्पी बर्थडे टू विश्वानी रामचंद्र ऑफ गांव, बेस्ट विशेज फ्रॉम हबीटा आयुष सिस्टर है मादिया एंड अमृता ओसो नोटिफिकेट पद्मी की तरफ से और लचना फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पेशल विशेज गुजारते हैं ईच एंड एवरीबॉडी जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, खास दिन हमारे साथ आरएम टू रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: चलिए स्पेशल हैप्पी बर्थडे गुजारते हुए ये शागंगा भी सुन, बेस्ट विशेस फ्रॉम दादा दादी फूफू फूफा एंड भाई तनवीर है तेज राइन आरायन फ्रॉम मामा अनिष्टा पापा तरस एंड फैमिली ऑफ कैटरबॉर्न ट्यूनिंग टू आरिंग टू रेडियो मस्ती. हेलो जी प्यारी मनीषमा टीना हियर. हाय टीना, एंजॉयड योर प्रोग्राम. हरे गाने को वह हम पसंद कर रहे थे, जस्ट वाओ, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला. सुपर शो, माइंड ब्लोइंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू. जाने का समय हो चला है, हमारे बाद लेकर आ रहे हैं इतने सारे प्यारे प्यारे गाने. नीतू शाड़ी है, टाइम टू गो डाउन मेमोरी लेन. यू टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल 9 से लेकर 12.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: घड़ी मिलाते चलिए दिन के ठीक 12 बजे हैं. संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार.
6: नमस्कार आदाब. सहमत हैं बीजू कप में आज सुने कार्रवाई चलाई जिसके दौरान ड्रग तस्करी के जुर्म में 42 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया. अफसरों को 10 पैकेट मिले जिनमें पत्ते थे गांजे का शक है. ड्रग्स की कीमत 4.5 मिलियन रुपए की बताई जा रही है. आजसू अपनी जांच जारी रख रही है. ग्रेट ब्रिटेन में काम करने वाले दो मोशन माहिर मॉरिशस में ऑफ्थाल्मोलॉजी क्षेत्र में तरक्की लाने का मकसद रखते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए

स्क्रीनिंग की जा सकती है और माइक्रो इम्प्लांट से ग्लूकोमा का इलाज किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मॉरिशस को 10 इम्प्लांट्स भी दिए और कल उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के वास्ते पोर्ट लुई में ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से एक रस्मी मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करने वाले लोगों को अगर काम नहीं करना है तो वे अवकाश ले सकते हैं, क्योंकि वे जनता की बेहतर सेहत चाहते हैं। भूमि और आवास मंत्रालय देश भर में मकानों को प्रदान करने की योजना में तेजी लाने का ऐलान कर रहा है। 31 जुलाई 2026 तक न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट NSLD की करीब 2300 इकाइयों की परियोजना चलाई गई जो 12 जगहों पर हैं। 1200 से ज़्यादा मांगों को स्वीकार किया गया और करीब 300 परिवारों को अपने नए घर की चाबी मिली। और जहां तक NHDC के मकानों की बात है, 5 परियोजनाओं के तहत 185 इकाइयों पर काम किया जा रहा है। इन इकाइयों के लाभार्थियों की अलग अलग कहानी है जिन्हें बरसों बाद एक छत नसीब हो रही है। और फिलहाल भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं और आवास के क्षेत्र की ज़्यादा जानकारियाँ दे रहे हैं। विदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में हमास के निरस्त्रीकरण के सिलसिले में शांति परिषद के रोड मैप को ठुकरा दिया है। व्हाइट हाउस ने उनकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज किया और कहा कि वो अपना अभियान जारी रखेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। शमेले कल कैस कौतों वाकवा में 77 साल की 77 years old श्रीमती सुमती लाल बहादुर जो कमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे इनके घर स्कूल लेन कैस कौतों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोदाएं सैंपिये या बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे एट हाफ पास 2 PM मोसल मोगामालिंगम फॉरेस्ट साइड क्यूपिप में 44 साल के 44 years old जनाब मोहम्मद शकील साहिब जो शकील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दो बजे इनके घर मुसलमान रामालिंगम फॉरेस्ट साइड क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बिकाहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM रॉयल रोड पेटिट रिविया में 76 साल के 76 years old श्री जयदत्त जीवुत जो जय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे रॉयल रोड पेटिट रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM नंबर सेवन गोवा स्ट्रीट प्लान वेयर में 52 साल के 52 years old जनाब सनाउल्ला बोयराजी जो सनाउल्ला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज डेढ़ बजे इनके घर नंबर 7 गोवा स्ट्रीट प्लान वेयर से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए अलहसान मस्जिद और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM एवेन्यू कोबिजो मोतीदा में 90 साल की 90 years old बीबी राबिका रामपत पैदाइशी नाम बाकोगाली जो आफेज के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज ढाई बजे इनके शौहर जनाब अब्दुल सातो रामपत के घर एवेन्यू कोबिजो मोतीदा से उठाकर दफनाने के लिए मेजिन कौदीमास का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM एवेन्यू राजकुमार लेन बियातो कात्रोबोन में 79 years old श्रीमती चंद्रावती मेराई पैदाइशी नाम जियावक जो लोलो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल डेढ़ बजे के घर राजकुमार लेन बियातो कात्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM सैं फ्रांसवा कालूजी में 84 साल की 84 years old श्रीमती उमाबती बारा पैदाइशी नाम बाजो जो उमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे के घर सैं फ्रांसवा कालूजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रॉयल रोड मोड ऑस्ट्रेलिया में 83 साल के 83 years old

0: महेंद्र सिंह भवानी पेक, श्री महेंद्र सिंह भवानी पेक, जो दाऊदा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर रॉयल रोड मोदोस्ट्रालिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोदोस्ट्रालिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। नंबर 25, नंबर 25 कैपिटेन पोंट्रे सेंट क्रॉ में 56 साल के 56 years old श्री जयराज मुसेन, जो सुंदर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे इनके घर कैपिटेन पोंट्रे सेंट क्रॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुइले वाले दीप्रत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती रेट्रो रिदम
2: RM2

0: पर हम तो ना ही अपने ख्वाब को और ना ही आपको भूले हैं।
1: रेट्रो रिदम
0: दिन के 12:13 हो रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपने ख्वाबों को ऐसे ही संजोते हुए बस हमारे हम सफर बन चुके हैं इस 2 घंटे के सफर में, यानी कि इट्स योर रेट्रो रिदम। आपको ले चले हैं डाउन मेमोरी लेन एंड सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ। सो यस, नीतू आपके साथ टिल 2 PM और बस ऐसे ही घूमते रहेंगे 70s, 60s, 80s, 90s के दुनिया में। आप हमारे हम सफर बनेंगे तो ये सफर और भी खूबसूरत बनता चला जाएगा। सैकत नफ नफ दोज नफ काट पर 5499-1294 पर वेटिंग फॉर योर पैगाम, आपके नाम, अपनों के नाम, कोई भी इवेंट हो, कोई भी खुशखबरी हो, जो भी हो, कुछ ना कुछ आप भेजना चाहते हो अपने दिल की आवाज, देन नीतू आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स इट्स लंच टाइम, सो विशिंग यू ऑल शुभ आहार, बोन अपेटी।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क Limited.
0: Join the RM2 team this Wednesday, 12th of August at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival, organized by Event Works Limited, powered by SBI and LIC at SBI CCPI. RM2 will be live from 3 p.m. to 5 p.m. Enjoy shopping, entertainment, live performances, a food festival, and lots more. So don't miss out.
3: Communiqué de la CWA. Face à la baisse inquiétante de nos réserves en eau, de nouvelles mesures entrent en vigueur à partir du lundi 10 août 2026. L'utilisation de l'eau potable est désormais strictement encadrée. Interdiction de remplir les piscines, d'utiliser des nettoyeurs à haute pression ou de laver des véhicules avec de l'eau potable dans les centres de lavage. L'irrigation sera autorisée uniquement pour les champs de légumes. La police veillera à ce que ces restrictions soient respectées à la lettre. Ces mesures sont essentielles pour préserver notre eau aujourd'hui et pour les jours à venir. C'était un message de la Central Water Authority.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: Square to team this Wednesday, 12th of August at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival, organized by Event Works Limited, powered by SBI and LIC at SBI CCPI. RM2 will be live from 3 p.m. to 5 p.m. Enjoy shopping, entertainment, live performances, a food festival and lots more. So don't miss out.
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.
3: बारह बजकर 25 मिनट हो रही है. बर्थडे है आज आपका. बेस्ट विशेस आपको. लेकिन आपके साथ हमारे जो बॉलीवुड स्टार है सुनील शेट्टी अन्ना, उनका भी बर्थडे है. ऑलरेडी 65 ईयर्स. ऑलराइट, उनके सभी फैंस की तरफ से ये गाना उनको नजर करती है. एंड यहाँ पर है कौन हमारे साथ. आज हमारी शादी की 33वीं सालगिरह है. नहीं, 25 यानी कि 35वीं सालगिरह है. एंड बेस्ट विशेस आपको वाइफ कविता एंड आपके नाम भी. आप है कौन यहाँ पर मैं देखती हूँ. ऑलराइट मिस्टर प्रीतम, सो पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. डबलिन से स्वीटी हॉलीडे सेलिब्रेट कर रही है लेकिन मॉरिशस में है. मामा गीता, पापा बलम, गिदोई फैमिली है आमीचे से. जमन परिवार मोचिदा से एंड हबी सुजय. बेबी सिया, हेमा, केविन, एंजल, सारानिया, यश, गामा एंड सब परिवार के नाम. यही अगला गाना गुजार टू यू. यहाँ पर हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेस टू यू बिनेश. फ्रॉम सासुमा, पत्नी है करुणा, कामिनी, तनवीर, आयशा, तेजल, रायना, रायान, कमला, गंगा, बिसुन फैमिली, कैथरबोन से. सो 5499-1294 पर चले भेजिए अपनों के नाम, प्यार भरे गाने और मैसेजेस. और ये अगला गाना

ऐसा ही होता है, हर कोई मजनू दीवाना दीवानी बन जाते हैं जब प्यार में पड़ जाते हैं। आप ही सुबह भेजो फटाफट आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294। नेक्स्ट गाना आपके नाम लाली तंजीत इन फैमिली कल्याणी जी कौतूहल से है। आज जो शाटो पेनागस की प्यारी सी ज्योति।

माधव परिवार, हबी संजीव, अगला गाना आपके नाम, आपकी लवली वाइफ दीपा, बेटियां वीमी एंड मेघा, सुनातन परिवार अर्नेस्ट लोहान से। और आज फिर जीने की तमन्ना है, हमारी भी जीने की तमन्ना है, आज नहीं रोज, लेकिन इस गाने की फरमाइश आपकी है, शमशाद बेगम, हमारी लोकल शमशाद बेगम है, एंड बंधु परिवार।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: हाँ, क्या कहा रागिनी? यस, ये गाना आपकी फरमाइश है। अब को सरामपुर का लक्ष्मण फिल्म से लिया गया किशोर कुमार लता जी का गाया हुआ।
3: गुम है किसी के प्यार में।
2: ओहो, आप ही।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: 12:47 हो रही है. अच्छा लगता है ना ऐसे गाने सुनकर. कुछ 90s, कुछ 70s, 80s, back in the 60s. ये है रफी साहब की आवाज मेरे बेचैन दिल को. चलिए दिल को बेचैन करने वाली मूवी आमने सामने. सामने तो नहीं लेकिन हाँ दिल के करीब तो है. आप दिल में बसे हुए हैं. थैंक यू सो मच मिस्टर बाबू अनटवा बस कैथ बोन से. ये गाना आपके नाम आपके पूरे परिवार के लिए. शशि कपूर साहब के फैन हैं आप तो देव बेशक. बॉबू से धनेश्वर जी पत्नी सुनीता निशा रानी मीना ऋषि हंसवी बियाना भाविका सभी दावेदो सनीचर कॉलेज ऑफ फैमिलीज के नाम. अ वेरी गुड आफ्टरनून नमस्कार आपको भी अनुशान होरी राम परिवार प्लेन दे रोश से. पापा ससन आपकी माँ प्रेमिला भाई संजू भाभी रोशनी परी आपकी नेस हेमकेश एंड सब परिवार के लिए.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
3: एक बजा है। देश विदेश की खबरें सुनते हैं आपसे भी धीमा। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार नितुषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। श्रम कानूनों में संशोधन की मांग को लेकर आत्मा शांति की भूख हड़ताल जारी है। श्रम मंत्री रिसाउतिम और यूनियन नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने निजी क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा की कमी और नियोक्ताओं के असहयोगी रवैये पर चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने बेलोंबक के एक होटल में हुए यौन उत्पीड़न के प्रयास के मामले में श्रम मंत्रालय की निष्क्रियता का भी पर्दाफाश किया, जहां कथित तौर पर पीड़िता को मुआवजा कर चुपचाप देश छोड़ने पर मजबूर किया गया था। विदेश में बसे मॉरिशस के विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अब मॉरिशस के रोगियों की सेवा में है। यूके में रहने वाले दो नेत्र रोग विशेषज्ञों प्रोफेसर पैथ्रिक यू वाईमान और डॉक्टर सिंथिया यू वाईमान ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्राम से मुलाकात की। वे कैम्ब्रिज, लंदन और सिंगापुर नेशनल आई सेंटर के विशेषज्ञों के समर्थन से ग्लूकोमा और मधुमेह से जुड़ी आंखों की बीमारियों के लिए नई स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। आवास और भूमि मंत्रालय ने देश भर में सामाजिक आवास के वितरण में तेजी लाने की घोषणा की है, जिसके तहत 2300 NSLD और 185 NHDC मकानों की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है और लगभग 300 परिवारों को चाबियां मिल चुकी हैं। हालांकि इन आंकड़ों के पीछे उन जरूरतमंद परिवारों जैसे एकल माताएं और मेहनतकश माता पिता का वर्षों का इंतजार छिपा है, जो अपने बच्चों के लिए एक पक्की छत पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और विदेश में वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने रात भर यूक्रेन पर हुए घातक हमलों में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि ज़ापोरिज़्या में हुए हमलों

0: में 6 लोग मारे गए में उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। रात भर में यूक्रेन में कम से कम 9 लोग मारे गए। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। La chapelle ardente de Murat, Railroad Petite Rivière में 76 साल के 76 years old के श्री जयदत्त जीवित जो जय नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। वे Railroad Nouvelle Mille Triolet रहते थे। उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे La chapelle ardente de Murat, Railroad Petite Rivière से उठाकर Triolet की शमशान भूमि दी जाएगी। Cremation today at 3 p.m. Avenue Corbijou, Montsidam में 90 साल की 90 years old की बीबी रबीका रामपत पैदाइशी नाम बकोर अली और जो हाफिज नाम से भी जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 2:30 बजे उनके शौहर अब्दुल सत्तर रामकत के मकान एवेन्यू कोबिजो मोतीदा से उठाकर मेजिन कौंडमास का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30। नंबर 25 कैप्टन पोंथ्रे सेंट क्वा में 56 साल के 56 years old के श्री जयराज मुसैन जो सुंदर नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर नंबर 25 कैप्टन पोंथ्रे सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भोले वाली दिवत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 2:30। Saint-François Caludine में 84 साल की 84 years old की श्रीमती उमाबुती बारा पैदाइशी नाम बाजू और जो उमा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर सैन फ्रांसवा कालोजिन से उठाकर दागुची की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 2:30। मुसलमान हमालिंगम फॉरेस्ट साइड क्यूपिप में 44 साल के 44 years old के जनाब मोहम्मद शकील साहिब जो शकील नाम से भी जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके घर मुसलमान हमालिंगम फॉरेस्ट साइड क्यूपिप से उठाकर बिकाहा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 p.m. शुमेल कल कैंस कौतों वाकवा में 77 साल की 77 years old की श्रीमती सुमती लाल बहादुर जो कमला नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर शुमेल कल कैंस कौतों वाकवा से उठाकर मोताय सैफिया बोंपू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: RM2 Radio Masti Retro Rhythm
2: RM2 Radio

0: 102 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC पाए सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC पाए मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.
1: Welcome back. 1:11 थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे गाने प्रीति रियली होप आपको राजा सुल्तान फिल्म का गाया हुआ लता जी की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल थैंक यू सो मच दो लफ्जों की है दिल की कहानी बस बयां कर दीजिए अपने मैसेजेस के जरिए ऑन 5499-1294 कैसे हैं आशीष मिष्टी हिमाक्षी रेशमा के नाम सत्यमेव जयते दिल में हो तुम क्या गाना है दिस वन गोज आउट टू यू टू लवली पीपल एंड बस 5499-1294 पर आपके इंतजार में

नहीं तो नमस्ते, मैं हूँ सुनीति जमन। आज मेरी नाती नवनी का बर्थडे है और देखते देखते बच्ची जो है बड़ी हो गई है, लेकिन बड़ों के लिए बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, बड़े भी बच्चे होते हैं। सो नन्ही परी को जमन परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार और अर्जुनन परिवार की तरफ से भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारे जो ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं सब की तरफ से। बप्पी लहरी की आवाज़ में ये है सत्यमेव जयते।

0: वाकई में पहले के गानों में जो मेलोडीज हुआ करती थी ना, ओ माय गॉड, आज भी है, लेकिन अभी नहीं कहती है ओल्ड इज गोल्ड। तो चलिए गोल्डन एरा के ओल्डन गानों को हम एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती, रेडियो मस्ती।
0: प्यारी सी रोशनी, आपका चेहरा एकदम खिलखिला सा उठा है, क्यों? क्योंकि आपका जो गाना है वो चल पड़ा है फ्रॉम द मूवी शक्ति। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो जाए, यू नेवर नो, जब दिल बोलता है शायद तभी। सो 5499294 पर अ वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पर है, अरे बाप रे बाप, इतने सारे नाम। बाहुश पॉब्लम से मीठी निकित जियाना रियाना भोला शबनीस कल्याणी रीना संध्या अंजलि दुबोगी राज ऋषि स्टेफानी इरफान तनुजा मोनाशा, किसी को भूली तो नहीं ना, सबको बोंकुहाश।

0: वाह क्या गाना है आशा जी की आवाज में समाधि फिल्म से लिया गया जब तक रहे दम में दम तब तक गाना आपके नाम चलाते रहेंगे ये था गाना आपके लिए भाई महेंद्र पाल्मा कैथ बोन से पूरे परिवार के नाम
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: अब्दुल अंसार अबानू, गुड आफ्टरनून. आज मेरी भांजी गोपी का बर्थडे है फ्रॉम यूके. अमर जी हैं गौंत खुदखत से. पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स.

अभी भी आप ही खा रहे हैं, कसम नहीं लेकिन हाँ खाना जो खा रहे हैं बोना पीछे शुभाहार। बस ऐसे ही कसम खा कर जाते हैं कि वापस जब मुलाकात होगी तो ऐसे ही प्यारी सी होगी। थैंक यू सो मच सुया बिहारी कुंगुमा से पूरे परिवार के नाम। गाने अगर आपको अच्छे लगे तो हम भी खुश हो गए। बस ऐसी इसी खुशी के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं 2 बजे के समाचारों के बाद परी के साथ बॉम्बे टॉकीज़। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा. आपको नमस्कार.
6: सभी सुनने वालों को नमस्कार. युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय संवाद के केंद्र में जेंडर इक्वालिटी मॉरिशस विश्वविद्यालय और जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ वॉइसेस फॉर जेंडर इक्वालिटी कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थागत प्रतिनिधियों को एक ही सवाल पर एकजुट किया गया. एक अधिक समान और समावेशी समाज का निर्माण कैसे किया जाए. छात्रों के साथ सीधे संवाद के लिए आमंत्रित राष्ट्रपति ने उन्हें खुद बदलाव के वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया. दूसरी ओर युवाओं ने लैंगिक समानता के लिए एक चार्टर प्रस्तुत किया और इस दिशा में काम करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता जताई. वे मॉरिशस के डायस्पोरा का हिस्सा हैं और उन्होंने अपनी मातृभूमि के रोगियों की सेवा में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का विकल्प चुना है. इंग्लैंड में अभ्यास करने वाले न्यूरो ऑप्टाल्मोलॉजिस्ट और ग्लूकोमा विशेषज्ञ प्रोफेसर पैट्रिक और सिंचा यू वाई मान इस सप्ताह मॉरिशस वापस आए हैं. मोका के न्यू आई हॉस्पिटल में वे पहले ही आंखों की समस्याओं से पीड़ित लगभग 100 रोगियों की जांच कर चुके हैं, जिनमें से कई ग्लूकोमा से पीड़ित हैं. इस सप्ताह वे परामर्श और लेजर उपचार भी प्रदान करेंगे, साथ ही जरूरतमंद रोगियों को मुफ्त में सूक्ष्म प्रत्यारोपण भी उपलब्ध कराएंगे. आवास और भूमि मंत्रालय ने देश भर में सामाजिक आवास के वितरण में तेजी लाने की घोषणा की है, जिसके तहत 2300 NSLD और 185 NHDC मकानों की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है और लगभग 300 परिवारों को चाबियां मिल चुकी हैं. और विदेश में कोलंबिया में आए पिछले कुछ वर्षों के सबसे बड़े भूकंप के बाद कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है और आपातकाल की घोषणा कर दी गई है. ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे और अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
1: More music in the

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So that was a beautiful song to start with. Angna phool khilenge. वैसे जब भी हमारे listeners आते हैं तो हम तो happy happy हो ही जाते हैं, लेकिन अभी के लिए it's time जहां पर 2 से लेकर 4 बजे तक हम connect करने वाले हैं आपके साथ. मैं हूं परी आपके साथ and well it's time for your Bombay Talkies. Monday to Friday 2 से लेकर 4 बजे तक B-Town की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, आपके favorite celeb से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाते हैं. And I do hope that आज का ये जो Tuesday है it's going एकदम fine, and अगर fine नहीं भी चल रहा है not to worry, हम हैं ना गुड म्यूजिक के साथ. वी आर गोइंग टू सेट योर मूड और आपके

ये कुछ ऐसे गाने हम प्ले करने वाले हैं जिन्हें सुनते-सुनते आपको भी लगेगा कि भाई ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो या फिर वीकेंड हो एवरीडे स्पेशल विद RM2 रेडियो मस्ती So to all our dear friends जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं काम पर पहुंच गए हैं या अभी भी घर पर रिलैक्स कर रहे हैं अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है वी आर गोइंग टू प्ले सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आपके दिल का हाल यू कैन सेंड मी ऑन 5499-1294 वेटिंग फॉर योर शाउट आउट्स हमारे इसी मैजिकल नंबर पर अभी के लिए जो नेक्स्ट ट्रैक है हमारे सभी लिसनर्स के नाम हैव अ ग्रेट टाइम यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: Like we always say that music is a therapy, दोस्तों और अभी के लिए तो afternoon time को special बनाने हम आए हैं आपके musical हमसफर बनकर on RM2 Radio Masti. Time to play a game जहां पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. खेलिए आप ABC and Rajasthan Works Limited के साथ और जीत सकते हैं 4 entry tickets and 1 food coupon for Jain's Little India Shahi Thali, जिसे आप enjoy कर पाएंगे at Utsav India Mauritius Shopping Carnival. Details आपको देंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन आपके लिए सवाल है very simple सा. अगला गाना आप सुनिए और आप हमें इस फिल्म का नाम बताना है. That was a beautiful film. गाना भी एकदम wonderful और इस गाने को हम dedicate करना चाहेंगे for everyone who's listening to RM to Radio Masti right now. तो इस गाने को सुनिए और आप हमें बताइए कि ये जो गाना है कौन सी फिल्म से लिया गया है. You can send me your right answers on 5499-1294, 5499-1294. यही है हमारा magical number and do send me your right answers आपके पूरे नाम और पते के साथ. All the very best. चलिए सो चल पड़ा ये गाना. गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये गाना जो है कौन सी फिल्म से लिया गया है. A beautiful song for all the listeners who are connected to Radio Masti के साथ. That's your Bombay Talkies. Enjoy this one.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: वेल सो क्वेश्चन टाइम क्वेश्चन टाइम. दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. आपको हमें बताना था ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है. एंड द राइट आंसर इज शिद्दत. उसी फिल्म का ये गाना. एंड यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. लकी ड्रॉ के बाद कौन बने हैं हमारे लकी विनर. आप है शालिनी बिसंबर, आप है बलरीव से और दिया है सही जवाब. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो वेल शालिनी, आपने खेला एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है आपने 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेन्स अ लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे यार उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट एसबीआईसीसी पाई सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. साथ ही आप वहां पर एंजॉय कर पाएंगे बहुत कुछ खास. होने वाला है इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, लाइव परफॉर्मेंस होगा बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपियरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैनमा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल एज वेल. ऑल दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. सो गिफ्ट को कलेक्ट करने के लिए आना होगा एमबीसी मंडे टू फ्राइडे. आप यहां पर आ सकती है सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 पीएम तक. डू ब्रिंग योर आईडी अलोंग एंड यहां पर खूबसूरत गानों का कारवां चलता रहेगा आपके नाम. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. साथ देने के लिए शुक्रिया एवरीवन हु इज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: 92
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
1: Radio Mustang.

0: सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ एंड इट्स टाइम कि हम बॉलीवुड की कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे।
1: बॉम्बे टॉकीज
2: रेडियो मस्ती,
3: रेडियो मस्ती।
0: Going to talk about इमरान हाशमी, उनकी जो कल्ट क्लासिक फिल्म है आवारापन, उसका सीक्वल आवारापन 2 जल्द ही सिनेमा घरों में दस्तक देने वाला है। फिल्म में दिशा पटानी और शबाना आजमी भी अहम किरदारों में नजर आएंगी और आपको बताएं कि यहां पर जो स्टार्स हैं उन्होंने फिल्म के लिए कितने पैसे चार्ज किए हैं। सो फिल्म आवारा 2 को लेकर दर्शकों के बीच काफी बस बना हुआ है और फिल्म की रिलीज से पहले अब इसकी स्टारकास्ट की जो कथित फीस है उसको लेकर भी जानकारियां सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान हाशमी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान हाशमी ने आवारापन 2 में अपने आइकॉनिक किरदार शिव पंडित को दोबारा निभाने के लिए करीब 12 की जो फीस है वो चार्ज करी है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये फीस उन्हें 2007 में आई फिल्म आवारापन के लिए जो मिली थी उससे करीबन 10 गुना ज्यादा है। वहीं अगर दिशा पटानी की हम बात करें तो इस फिल्म के लिए उन्होंने करीबन 5 चार्ज किए हैं और शबाना आजमी, यस, दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी आवारापन 2 का हिस्सा है और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाली ये एक्ट्रेस उन्होंने भी इस फिल्म के लिए करीबन 5 चार्ज किए हैं। सो दैट्स द स्टारकास्ट। यहाँ पर इमरान हाशमी का नाम तो सामने आ रहा था लेकिन अब पता लग रहा है दैट दिशा पटानी और उनके साथ एवरग्रीन एक्ट्रेस शबाना आजमी भी इस फिल्म में नजर आने वाली है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है, लेकिन अभी के लिए तो बना हुआ है काफी सारा बज और बज तो बना हुआ है आपके बीच भी जहां पर आप हमारे साथ कनेक्टेड है। बी टाउन में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा काम कर रही है, सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं अभी से लेकर 4 बजे तक। मैं हूं परी आपके साथ, कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ।

So this one goes out for everyone who's driving right now. Drive करते हुए, घर पर आराम करते हुए, work from home लिया हुआ है. So not to forget, हम हैं आपके साथ. काम पर पहुंच गए हैं and that's your tea time. So जहां कहीं से भी आपने tune in किया है, good music आपके लिए. On RM2 Radio Masti, अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. And this one goes out for everyone who's connected. वैसे कहते हैं कि music therapy होती है और music सुनने के बाद मन में चाहे कितने भी उलझने क्यों ना हो, लगता है that everything is all right because good music हमेशा आपके mood को change जरूर करता है. एंड यहाँ रेडियो मस्ती पर हमारी कोशिश यही होती है कि 24/7 आपके लिए हम गुड म्यूजिक लेकर आए. टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन, लेकिन विद अ ट्विस्ट, वी हैव दिस गाना फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड हमारे साथ. वर्षा सिंह की आवाज, अ ब्यूटीफुल इंडी पॉप. एंजॉय दिस वन.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
0: RM2
1: Radio Musti.
2: So beautiful songs you're enjoying on Radio Masti and it's time aapke kuch messages dedications jo aapne pahunchaye hain 5499-1294 par Abdul and Saira Banu saath de rahe hain aap so have a lovely afternoon we have this beautiful gana aapke naam everyone who's connected hamare saath bas aise hi aapke sweet messages and hum ise sajayenge kuch beautiful songs ke saath good afternoon pari beautiful songs on Radio Masti thank you so much Yalesh aap bhi saath de rahe hain and you are enjoying the songs hamesha connected rehte hain Radio Masti ke saath and it means a lot so ye gana ise dedicate karenge For you, equally goes out for all Sham family of Suriname, जो साथ दे रहे हैं हमारा. Thank you so much. We also have Kavita Ji, आप भी हमारा साथ दे रही हैं. Thank you. और कहती हैं working right now, dedicating गाना for all the colleagues. उन्हें wish करना चाहती हैं a lovely afternoon, a lovely time. And आज आपकी दोस्त प्रिया, she's celebrating her birthday as well. उनके लिए wishes ये है सभी दोस्तों की ओर से, सभी colleagues की ओर से. एंड चलिए यहाँ पर जीतने के मौके और भी मिलेंगे जैसे हमने गेम खेला था एंड वी आर स्टिल गेटिंग द राइट आंसर्स इट रियली मींस अ लॉट बस पार्टिसिपेट करते रहिए और थोड़ी ही देर में कुछ और खास कुछ स्पेशल आपके लिए होने वाला है ऑल यू हैव टू डू इज रेडियो मस्ती के साथ कनेक्टेड रहें कीप एंजॉइंग द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड कीप ड्रॉपिंग इन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर

एंड वेल फ्रेंड्स विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. देखते ही देखते वन आवर कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला. वैसे आप अगर काम पर हैं आई एम श्योर एवरी मिनट आपको पता लग रहा है बिकॉज काम पर जो है वो वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है. लेकिन गानों के साथ टाइम का पता कहाँ चलता है. तो बस कनेक्टेड रहिए आप रेडियो मस्ती के साथ. विल प्ले सम गुड सॉन्ग्स आपके मूड को सेट रखेंगे और आपके आफ्टरनून को थोड़ा सा और म्यूजिकल थोड़ा सा और मैजिकल बनाएंगे. मैं ऊपर ही आपके साथ 4 PM राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. थोड़ी ही देर में समाचार लौट कर आएंगे with some more Bollywood updates with some more beautiful songs. आप कहीं मत जाइए. Stay well tuned.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: Time check, exactly 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विदिमा। आपको नमस्कार।
8: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। श्रम मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से ठीक पहले समाप्त हुई बैठक के बाद आत्मा शांतु ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। यूनियन नेता का ये निर्णय श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोपों से घिरी 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद आया है। युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय संवाद के केंद्र में जेंडर इक्वालिटी, मॉरिशस विश्वविद्यालय और जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ वॉइसेस फॉर जेंडर इक्वालिटी कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थागत प्रतिनिधियों को एक ही सवाल पर एकजुट किया गया। एक अधिक समान और समावेशी समाज का निर्माण कैसे किया जाए? छात्रों के साथ सीधे संवाद के लिए आमंत्रित राष्ट्रपति ने उन्हें खुद बदलाव के वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वे मॉरिशस की डायस्पोरा का हिस्सा है और उन्होंने अपनी मातृभूमि के रोगियों की सेवा में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का विकल्प चुना है। इंग्लैंड में अभ्यास करने वाले न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट और ग्लोकोमा विशेषज्ञ प्रोफेसर पैट्रिक एन सिंचा यू वायमान इस सप्ताह मॉरिशस वापस आए हैं। मोका के न्यू आई हॉस्पिटल में वे पहले ही आंखों की समस्याओं से पीड़ित लगभग 100 रोगियों की जाँच कर चुके हैं, जिनमें से कई ग्लोकोमा से पीड़ित हैं। और विदेश में लीबिया के जाविया में पेट्रोल टैंक में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस जगह को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया था। ढह चुके इस टैंक में 3000 टन से ज़्यादा पेट्रोल मौजूद था। अब तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। सेवास्तोपोल में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री ऋषि कुमार गोपल, जो ऋषि नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे सेवास्तोपोल के टोटल फिलिंग स्टेशन के मालिक थे। उनकी अर्थी गुरुवार 13 अगस्त को सुबह 10 बजे उनके पिता श्री हरिदत्त गोपल के घर सेवास्तोपोल से उठाकर पहले सेवास्तोपोल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: RM2 Radio Musti.
9: More music is in the mix.
10: Aaj Azadi hai.
11: Bombay Talkies
1: Radio Musti.
0: Radio Musti.

So well friends, welcome in this hour. 3:06 हो गए हैं. Tuesday afternoon, 11th of August. I do hope that आज का दिन आपका अच्छे से बीत रहा है. ऐसे म्यूजिक के साथ तो मूड सेट हो ही जाता है. And that's a beautiful track. Like we always think कि जिंदगी में हम क्या कुछ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए. लेकिन ups and downs जिंदगी का हिस्सा होते हैं. कभी खुशी कभी गम, इसके बिना तो जिंदगी थोड़ी सी अधूरी लगती है. और जैसे हम कहते हैं, after a storm there's always a sunshine. So always wait for the good days. इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी खूबसूरत होगा, हम बस गुड विशेस आप तक पहुंचा रहे हैं. एंड वेल फ्रेंड्स, वी हैव दिस प्यारा सा गाना आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. फॉर ऑल द फैंस ऑफ जुबिन नौटियाल जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एंजॉय दिस वन गोज आउट फॉर यू.

And well, this one goes out for Akash. इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. That's the jungle edit for you. तिरछी टोपी वाले everyone जो हमारा साथ दे रहे हैं. That's your RM2 Radio मस्ती. मैं हूँ.

0: Bombay Talkies Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: आज जो बॉम्बे टॉकीज दोस्तों जहां पर हम बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं वैसे बी टाउन में इतना कुछ चलता रहता है कभी-कभार गॉसिप्स कभी-कभार कंट्रोवर्सीज एंड यही जो खबरें हैं वो सुर्खियां बन जाती है सो फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच डॉन 3 को लेकर विवाद अब भी चर्चाओं में है और इसी बीच फरहान ने एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर का नाम लिए बिना उनके फिल्म छोड़ने को लेकर एक बड़ी बात कह दी जो अब सुर्खियां बन रही है फरहान अख्तर हाल ही में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म दिल चाहता है 25 years पूरे होने के मौके पर एक रिपोर्टर से बात कर रहे थे और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ने का जिक्र किया बता दें कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 की शूटिंग के कुछ ही दिनों पहले फिल्म से बाहर होने का फैसला किया था इसके बाद फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ कई रिपोर्ट्स में दावा था कि रणवीर इस बात से नाराज थे कि फरहान अख्तर ने उनकी जानकारी के बिना इस रोल के लिए ऋतिक रोशन को कांटेक्ट किया था हालांकि फरहान ने इन दावों को खारिज किया था वहीं रणवीर ने फिल्म छोड़ने के बाद उनके जो साइनिंग अमाउंट है उसे वापस करने की पेशकश भी की थी दूसरी तरफ मेकर्स ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन में हुए नुकसान के लिए करीब 45 करोड़ का मुआवजा भी मांगा था

खबरें हैं वो अभी भी चर्चाओं में है और आई गेस कि फरहान अख्तर कहीं ना कहीं काफी हर्ट हुए हैं एंड रणवीर सिंह ही मस्ट बी हैविंग हिज ओन रीजंस. ये सब तो चलता रहता है, दैट्स अ बॉलीवुड. लेकिन अभी के लिए तो हम भी चाहते हैं कि ये दोनों जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इनके इश्यूज हैं, इन्हें सॉल्व कर दें और हम भी देखना चाहते हैं रणवीर सिंह को इन डॉन मूवी. लेकिन अभी के लिए तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. लेकिन चलिए दोस्तों, अभी के लिए जो चीज मुश्किल नहीं है वो है गुड म्यूजिक को एंजॉय करना, जिसे आप कर पाएंगे ऑन RM2 रेडियो मस्ती. मैं तो हूँ आपके साथ टिल 4 PM, जहाँ पर खबरों के साथ आपके लिए कुछ प्यारे गाने कर रहे हैं इंतजार. सो अभी के लिए वी हैव दिस सुपर रोमांटिक गाना for everyone who's connected hamare saath, for all the fans of Ranveer Singh, for all the fans of Dhurandhar, for everyone who's in love and everyone who enjoys good music. This one goes out for you.

0: Well, this one was for all the fans of Arijit Singh. Next one, for all the fans of Satinder Sartaaj. वैसे जाइए सजना, जहाँ पर हमने देखा उनका एक बहुत ही इमोशनल अवतार, यानी कि वो जो एक पार्ट उन्होंने गाया था, दैट बिकेम रियली स्पेशल. लेकिन जो नेक्स्ट गाना है, ये है उनका मस्ती वाला अंदाज. मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं. आफ्टरनून टाइम जुड़े हुए हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ. वेल, मैं हूँ फरी आपके साथ टिल 4 PM.
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: So that was a beautiful 90s mashup. Aap sabhi ke liye, for all the fans of 90s, wo bhi kya daur tha, wo bhi kya din the, wo bhi kya songs the. To bas usi magic ko recreate kiya humne on RM2 Radio Musti. Chaliye dosto, abhi ke liye hum baat karne wale hain Imran Hashmi ki. Once again, kuch media reports mein aisa dawa kiya ja raha tha ki Imran Hashmi R.D. Burman ki biopic se judne wale hain. Wo Mehmood ka role nibhayenge aur in khabron par ab khud actor ne apni pratikriya di hai. R.D. Burman ki biopic ko lekar fans काफी एक्साइटेड है. नीरज पांडे द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर खूब अटकलें लग रही थी. इसी बीच कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि एक्टर इमरान हाशमी फिल्म से जुड़ गए हैं. वो पंचम दा के करीबी दोस्त मशहूर एक्टर सिंगर कॉमेडियन महमूद की भूमिका निभाने वाले हैं, मगर इन खबरों का अब इमरान हाशमी ने खुद खंडन किया है. इमरान हाशमी ने बीती रात सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की और इसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो इस बायोपिक में काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने लिखा है, जस्ट टू क्लारिफाई द रिपोर्ट्स अबाउट मी प्लेइंग महमूद साहब इन अ बायोपिक आर अनट्रू. आई हैवंट बीन अप्रोच्ड फॉर द फिल्म एंड नॉर एम आई डूइंग इट. ये कहना है इमरान हाशमी का. सो अभी के लिए उनके फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड कि इस फिल्म में महमूद के किरदार में तो वो उन्हें नहीं देखने वाले हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक रोल जो वो जरूर निभाने वाले हैं वो है आवारापन 2 में, जो उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का. वैसे 2007 की जो आवारापन आई थी वो एक कल्ट क्लासिक बन गई थी. वैसे जब ये फिल्म रिलीज हुई वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, लोगों ने इसे सिनेमा में इतना देखा नहीं, लेकिन उसके बाद डीवीडीज पर और दूसरी जगह ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई दैट इसको काफी सारे व्यूज मिले और अब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसके सेकेंड पार्ट का. एंड वी ऑल नो दैट अक्खा बॉलीवुड एक तरफ एंड इमरान हाशमी एक तरफ. So let's wait and watch के क्या कमाल दिखाते हैं in this film. And अभी के लिए आपके messages, आपके dedications, like we always say, हमेशा तहे दिल से इंतजार होता है आपके love, आपके प्यार, आपके emotions का जो आप messages के जरिए हम तक पहुंचाते हैं. So थोड़ी ही देर में लेकर आएंगे your messages, your dedications on 5499-1294. तब तक के लिए दीजिए फरी का साथ on RM2 Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: And well, friends, it's 3:55 and an extract ke saath, it's time for Pari to say goodbye. Jaate jaate, how can we not read aapke messages, aapke dedications, aapka pyaar on 5499-1294. Lalita Jeetan saath de rahi hai, kehti hai, garma garam coffee and a crepe banana enjoying. Aur saath hi sabhi students, sabhi jo aapke colleagues hai, Portlo School se jo humare saath connected hai, unke naam dedicate kar rahi hai gaana, saath de rahi hai aap love on jaise. And we also have Davison from Lal Machi aaye hai apna pyaar lekar, so next gaana goes out for you. Veena Jagisar saath de rahi hai, aap Belvi Mohel से एक ब्यूटीफुल गाना डेडिकेट करना चाहती हैं फॉर ऑल फैमिली ऑल फ्रेंड्स कनेक्टेड टू आरएम टू रेडियो मस्ती. थैंक यू जी, गाना होगा आपके नाम. साथ ही कहते हैं गाना हो जाए फॉर लवली वाइफ आशा सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज फ्रॉम हस्बैंड अरविंद, उनकी बेटी जानवी, उनकी सासू माँ है सूर्यमती और सभी संपत परिवार लेकर आए हैं उनके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. एंड वेल, यहाँ पर हमारी प्यारी सी जो रोशनी है हमारा साथ दे रही है एंड आई एम श्योर दैट यू आर एन आर्डेंट फैन ऑफ रेडियो मस्ती. सभी लिसनर्स का नाम भी आपको याद है. कहती हैं गाना हो जाए फॉर अपाडू परिवार, यलेश, ललिता, जीतन, विश्वानी, दोमन, सायरा बानू, आकाश एंड ऑल द आरजेज. और कहते हैं कि आरएम2 सभी को एक बंधन में बांध कर रखते हैं. दैट्स रियली स्वीट रोशनी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. अगला गाना होगा आपके नाम. साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर प्रिंसेस राहा राम तोहल, उनके लिए स्पेशल विशेज कमिंग फ्रॉम ऑल फैमिली ऑल फ्रेंड्स. नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय और आ रही है गिनीशा लेकर योर अवतार वाइब्स. कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: Such a beautiful and mesmerizing track, especially aap logon ke liye on RMT Radio Masi. Thank you so much for choosing us as your radio partner. Chaliye, check your time, it's already 4 p.m.
1: RMT Radio Masi.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Masti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2, Radio Masti.
1: Radio Masti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti. The Masti. The Masti.
0: आइए सुनते हैं समाचार रिधिमा के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार रगिनिशा, सभी को नमस्कार. श्रम मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से ठीक पहले समाप्त हुई बैठक के बाद आत्मा शांति ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है. यूनियन नेता का ये निर्णय श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोपों से घिरी 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद आया है. मॉरिशस विश्वविद्यालय और जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ वॉइसेस फॉर जेंडर इक्वालिटी कार्यक्रमों में छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थागत प्रतिनिधियों को एक ही सवाल पर एकजुट किया गया. एक अधिक समान और समावेशी समाज का निर्माण कैसे किया जाए. छात्रों के साथ सीधे संवाद के लिए आमंत्रित राष्ट्रपति ने उन्हें खुद बदलाव के वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया. वे मॉरिशस की डायस्पोरा का हिस्सा है और उन्होंने अपनी मातृभूमि के रोगियों की सेवा में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का विकल्प चुना है. इंग्लैंड में अभ्यास करने वाले न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट और ग्लूकोमा विशेषज्ञ प्रोफेसर पैट्रिक एनसिंसिया यू वायमान इस सप्ताह मॉरिशस वापस आए हैं. मोका के न्यू आई हॉस्पिटल में वे पहले ही आंखों की समस्याओं से पीड़ित लगभग 100 रोगियों की जाँच कर चुके हैं, जिनमें से कई ग्लूकोमा से पीड़ित हैं. और विदेश में मौसम विभाग ने भारत में मानसून की सक्रियता के एक और दौर का अनुमान लगाया है, जिसमें 11 से 16 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2.

0: Well, guys, check your time. 4:07 हो चुके हैं. Wishing all of you a very good afternoon. Hey, namaskar, Ganesha ka pranam. कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे beautiful listeners? I really hope everyone is feeling good. Just like the sun is shining so bright, आपका mood भी एकदम bright है and that you're feeling positive. स्वागत है आप सभी लोगों का in your Raftaar vibes, जहाँ पे लेके जाते हैं on your filmy rides every afternoon 4 से लेकर 7 तक. So तैयार हो जाइए एक धमाकेदार शो के लिए, जहाँ पे हम चुन चुन कर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे गिने चुने नगमे just to pump up a little bit your lovely mood. So stay tuned and stay connected. गिनिशा है ना साथ देने के लिए. To all those जो अभी काम से निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, bag already on the shoulders and you are going to walk out the office to go back home. तो चलिए जी, I promise I'm gonna make your afternoon a good one. तो चलिए अभी के लिए good music के साथ साथ I'll be having a lovely game. Game के साथ साथ your sports news, traffic news and your fashion tips. और क्या? आपके dedications of course. So चलिए, I would love to dedicate the entire show to all those who are tuned to RM2 Radio Masti.
1: You're listening to Radio Masti.

0: बस मेरे लिए
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: OMG टाइम बेटा चला जा रहा है 4:27 हो चुके हैं. यू आर लिसनिंग टू गिनेश रायता ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती केंचो. आई रियली होप एवरीवन इज फीलिंग गुड एनर्जेटिक जस्ट लाइक मी. एक्चुअली ये गाने ही कुछ ऐसे हैं ना, जब भी हम लेकर आते हैं तो मूड अच्छा हो या ना हो, आई जस्ट ट्राई टू मेक यू स्माइल. एंड एक्चुअली आप बोले या ना बोले, इतना तो मुझे पता है कि बाय द एंड ऑफ द डे यू आर स्माइलिंग. तो चलिए जी, आई होप दैट यू आर लविंग द ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन. और अभी के लिए वी हैव द लवली गेम हैपनिंग राइट नाउ, जहां पे आप जीत सकते हैं 4 entry tickets and 1 food voucher for Jan's Little India Shahi Thali. And they would serve India Shopping, India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI and LIC, jo hone wala hai from the 12th till the 16th of August at SBICC at Pai. And shuru hoga subah, khulega 10 baje, raat ke 9 baje tak. पूछा गया था एक सवाल जहां पे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब एंड लकी ड्रॉ हमने कर लिया है और आज का लकी विनर है. नहीं, पहले मैं जवाब बताऊंगी. तो पूछा गया था कि जवान मूवी कौन से साल में रिलीज हुई थी. द मूवी जवान फीचरिंग अवर बादशाह यानी कि शाहरुख खान कौन से ईयर में रिलीज हुई थी. रिलीज हुई थी ऑन September 7, 2023. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. लेकिन एज पर द रूल ऑफ द गेम ओनली 1 lucky winner. और आज का लकी विनर है दिलशाद ओसनबाकस ऑफ अरियता. So congratulations to you, Mr. Dilshad, who

0: single day. Pass a mix of music. Radio Masti Sundera. Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Masti in the mix.
3: टाइम बीटा चला जा रहा है खूबसूरत गानों के साथ साथ आई रियली होप दैट यू आर हैविंग अ गुड गुड टाइम हमारे साथ ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती। तो चलिए जी बॉलीवुड की दुनिया से निकलकर जाएंगे अभी थोड़ी देर में स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ अरविंद। गुड आफ्टरनून
4: आपको, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, UEFA चैंपियंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के मैच आज खेले जाएंगे। रिटर्न लेग के मैच कायरत का मुकाबला लेव्स की सोफिया से होगा। लेव्स की सोफिया की जीत हुई थी फर्स्ट लेग में 1-0 से बोडो ग्लिंट यूनियन सेंट जिलोज। फर्स्ट लेग में 3-3 सबह का मुकाबला एजीएफ से 2-1 से एजीएफ की जीत हुई थी। फिर कोनो ज़ागिरिस का मुकाबला दिनो ज़ाग्रेब से, दिनामो ज़ाग्रेब 5-0 से आगे हैं। फिर NEC वर्सेस ओलंपियाकोस 0-0 फर्स्ट लेग में। रेड स्टार बेलग्रेड वर्सेस अपोएल 0-1 यानी अपोएल की जीत हुई थी फर्स्ट लेग में। सेलिए अरारात आर्मेनिया 2-1 से आर्मेनिया टीम की जीत हुई थी। सिस्लोवान ब्रातिस्लावा 2-1 से आगे हैं म्यालबी के खिलाफ। और स्टूम खास फेनेरबाचे 2-0 से आगे था। और ओलंपिक लियोने जिसकी हार हुई थी 2-1 से स्पार्टा प्राग के खिलाफ आज अपने होम मैदान में होगा। UEFA यूरोपा लीग के लिए भी एक मैच है, इबेरिया वर्सेस लाने 0-0 था फर्स्ट लेग में। UEFA कॉन्फ्रेंस लीग में भी एक मैच, अपोलो का मुकाबला ब्रांड से 1-0 से अपोलो की टीम आगे। और CSK का मुकाबला पनाथिनाइकोस से, स्कोर 1-1 था फर्स्ट लेग में। फ्रेंडलीज मैच में आज यूवेंटुस ने 2-0 से पालेर्मो को हराया। काफी फ्रेंडली मैच आज खेले जाएंगे। FA कप के मैच भी आज रखे गए हैं। इंग्लैंड के काराबाओ कप के राउंड के सेकंड राउंड के मैच खेले जाएंगे और ड्रॉ निकाले जा चुके हैं। नॉटिंगहम फॉरेस्ट का मुकाबला लीड्स यूनाइटेड से होगा। ये एकमात्र ओल्ड प्रीमियर लीग टाई होगा सेकंड राउंड के इस टूर्नामेंट में। न्यूकासल यूनाइटेड वेस्ट ब्रॉम के खिलाफ खेलेगा। फुलहम खेलेगा विंबलडन के खिलाफ। और चेल्सी जो 5 बार ये प्रतियोगिता जीत चुकी है वो ल्यूटन का स्वागत करेगा, जबकि टोटनहम हॉटस्पर चैंपियनशिप साइड चार्ल्टन के खिलाफ खेलेगा। ब्रेंटफोर्ड खेलेगा बर्मिंगहम सिटी के खिलाफ। ये कुछ मैच हैं EFL कप के ड्रॉ। ये सभी मैच खेले जाएंगे 24 अगस्त को। जो 9 प्रीमियर लीग की टीमें हैं जो यूरोप में हैं इस सीजन, ये लोग डायरेक्टली थर्ड राउंड में आएंगी। ट्रांसफर न्यूज, एक जियो मांडे गया रियल मैड्रिड में, एक दूसरा जियो मांडे है उस्माने जियो मांडे जो डिफेंडर हैं और पोर्टुगल के क्लब स्पोर्टिंग में खेलते हैं, उससे 34 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर नॉटिंगहम फॉरेस्ट ने साइन किया। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 1 साल और

0: पाया जा सकता है उस्मान जियोमांदे नॉटिंघम फॉरेस्ट में। मैनचेस्टर सिटी की शॉपिंग अभी समाप्त नहीं हुई है। मैनचेस्टर सिटी अयूब बुआदी को साइन करना चाहता है। 18 साल का खिलाड़ी लील में खेलता है, जिससे मोरक्को की टीम में जगह मिली थी। उसका दाम 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग तक बताया जा रहा है। सो खेल समाचारों में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कैच यू टुमारो मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक। बाय बाय।
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
2: Jumbo, Quality Déco, fin l'osso extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies, des pieds pas 4 pieds pas

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2 That was such a beautiful track to kickstart the second hour of this beautiful show. And that's your Rough Tar Vibes, your filmy rides with Megan Ishan. Now I'm to your Radio Masti. Studio ki ghadi mein 5 baj ke 8 minute ho chuke hain. So once again, a very good afternoon to all of you. Namaskar ji, Kinesha ka pranam. So kaisa chal raha hai ye khoobsurat sa Tuesday afternoon. Yes guys, already 11th of August 2026 to all those who are celebrating their birthdays today. I just want to wish you a magical birthday celebrating your wedding anniversaries. Hello ji, wishing you a happy togetherness. On our Rhyme 2 Radio Masti, हमारे पूरे ही मस्ती फैमिली की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू. तो चलिए जी, आई हैव गॉट योर ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन. और फिलहाल के लिए जस्ट रिमाइंडिंग यू, अगर आप किसी को स्पेशल फील कराना चाहोगे, वी हैव अ मैजिकल नंबर जहां पे आप अपने दिल की बात, अपने ही डेडिकेशन, अपने ही मैसेजेस लिख के भेज सकते हो. इट्स 5499124 पर. एंड द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक और इन टू रेडियो मस्ती. वी हैव जेवीड पटेल, ही इज वॉचिंग अस लाइव फ्रॉम दुबई. लक्ष्मण राजकुमार जी एंड रेयांश. Our next one goes out and to your family, your Sudanan family, jo hamara saath de rahe hain. We have Coco from France. And chaliye ji, Amrita, hello, a big hi goes to you. And we do have Roshan and Maharaji, and we do have Brijanan. The next one goes out to you. To chaliye, such lovely people are watching us live, so why not? This one goes out straight away from our heart to yours.

0: कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा गाना श्रेया घोषल वैशाली अमाडे की आवाजों में? तो चलिए जी फिलहाल के लिए ऑन 5499124 पर लेट्स चेक इट आउट, साथ में किसने किसको याद किया है और अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर यू याले शाम जो साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो सो मच माय डियर एंड वेल एंजॉयिंग वंडरफुल शो किचन में है एंड वी आर कुकिंग लेट्स स्वीट कुराज टू यू. गर्मा गर्म कॉफी पी रहे हो, शर्म नहीं आती है ना आप मुझे सुना रहे हो और मैं यहाँ पे बैठ के आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ और कॉफी भी नहीं पी रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं मेरी जान, हम भी पी लेंगे थोड़ी देर बाद. सो हियर वी गो, द नेक्स्ट वन गोस आउट टू यू फ्रॉम रिविया जू रॉपर माई डियर जो साथ दे रहे हैं. आपने अपना नाम नहीं लिखा, ओके दैट्स शेना जोगी. ओके शेना जोगी, द नेक्स्ट वन गोस आउट टू यू माई स्वीट हार्ट जेना जाना, दैट्स जाना फ्रॉम फ्लैक. सो ये अगला गाना स्पेशली आपके लिए, आपकी बेटी रीमा जनीता शेष्टांशनी सिल्विया और यू वी कृषि सुसहन परिवार के लिए जो फ्लैक के रहने वाले एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती राइट नाउ. श्वेता हुकम फ्रॉम बोनाके, द नेक्स्ट वन आपके हस्बैंड डुडू रोशन के लिए, उनकी बुबू रानी की तरफ से आई जस्ट वांट टू टेल हिम आई लव हिम सो मच हस्बैंड जी. कितना अच्छा लगता है ना आपकी डुडू एंड बुबू दोनों मिलके शादी सुन रहे हैं हमारे रेडियो मस्ती. मैंने आपका नाम लिया और वहां पे हमारी कॉलीग हमें ऐसे देख रही है, कौन है बुबू एंड डुडू? ये प्यार के नाम जब देते हैं ना किसी को, मतलब कि आपके दिल के बहुत ही करीब है. तो चलिए जी लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड द नेक्स्ट वन गोज़ आउट टू यू.
1: Radio Musti. Parez vous plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point à lieu dans SBI Sissipai tous les jours, à partir 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h. Point à shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipai, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: तो चलिए जी, टाइम बीटा चला जा रहा है, 5:39 हो चुके हैं। 12 दोस्त और ड्राइविंग ड्राइव केयरफुली। और अभी के लिए आई हैव गॉट यू योर लेटेस्ट फैशन टिप्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती। आज हम बात करेंगे अबाउट वेडिंग बैंगल फैशन टिप्स। शादी के लुक को और गोजस बनाना है तो बैंगल्स आर द परफेक्ट वे टू ऐड दैट एक्स्ट्रा देसी ग्लैम। जी हाँ दोस्तों, आउटफिट के कलर को कम्प्लीमेंट करो, लहंगा हो या साड़ी के कलर के साथ मैचिंग बैंगल्स चूज करो, कंट्रास्ट कलर्स भी सुपर स्टाइलिश लगते हैं। वैसे गोल और कलरफुल बैंगल

0: जो है ना, दे आर ऑलवेज द परफेक्ट कॉम्बो। ट्रेडिशनल वेडिंग लुक के लिए गोल्ड बैंगल्स को कलरफुल बैंगल्स के साथ ले या करो, इंस्टेंट रॉयल वाइब्स मिलता है आपको। वैसे ओवरडू मत करो, अगर आउटफिट ऑलरेडी हैवी है तो बैंगल्स थोड़ा मिनिमल रखो और सिंपल आउटफिट के साथ बोल्ड बैंगल स्टैक ट्राई कर सकते हो आप। बैंगल्स को ज्वेलरी के साथ बैलेंस करो और बैंगल्स इयररिंग्स और नेकलेस का ओवरऑल लुक कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। सब कुछ एक साथ हैवी रखने से लुक क्लटर्ड लग सकता है। सो स्टैक इट योर वे माय डियर, डिफरेंट साइजेस, टेक्सचर्स और कलर्स मिक्स करके प्रोफेशनलाइज बैंगल स्टैक बनाओ और वेडिंग फोटोज में हैंड्स भी ब्यूटिफुली स्टैंड आउट करेंगे। और ऐसे मेहंदी के साथ ग्रीन, पिंक, रेड या गोल्ड बैंगल्स का कॉम्बिनेशन स्पेशली गॉर्जियस लगता है। सो यू कैन जस्ट कीप इट फॉर योर वेडिंग फैशन टिप्स। एंड थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती। एवरी आफ्टरनून लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सम लेटेस्ट टिप्स। सो कीप ऑन लिसनिंग टू अस एंड कीप ऑन फॉलोइंग योर रेडियो मस्ती।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: मीना ककर और तनिष बागची की आवाजों में ये हैं आप लोगों के लिए गली गली अ ब्यूटीफुल रीमेक जहां दोस्तों अभी 5:53 हो चुके हैं बढ़ेंगे अगले गाने की ओर जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग हेलो जी मिस्टर ड्राइवर मिस हो मिसेस ड्राइवर ड्राइव केयरफुली और अगला गाना आपके नाम बिल्कुल जी बढ़ेंगे अभी 6 बजे के समाचारों की ओर और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती
1: You're listening to a Radio Mastery.

0: नमस्कार, मंगलवार 11 अगस्त 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने बेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवासीय लीज की दरों में संशोधन की घोषणा की। 40,000 से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाले इन नए कदमों का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों की मदद करना और अनियमित स्थितियों को सुधारना है। देश के दक्षिणी हिस्से में तटीय क्षेत्र और लासूजिन शमशान घाट तक स्थायी पहुंच तब तक जारी रहेगी जब तक दूसरा मार्ग पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। एबेन में भूमि और आवास मंत्री और ईओ एग्री के प्रतिनिधियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया, जबकि इस तटीय क्षेत्र की विकास योजना पर बातचीत अभी जारी है। विजन 2050 के तहत समृद्धि, समावेशिता और स्थिरता को प्राथमिकता बनाते हुए मॉरिशस के आगामी 25 वर्षों के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। इसके मसौदे को पोर्टली में संसद के सामने पेश कर दिया गया है और इसका अंतिम दस्तावेज इस महीने के अंत तक जारी किया जाएगा। और कोलंबिया में आए भीषण भूकंप के कारण कम से कम 160 लोगों की मौत हो चुकी है और आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। कोलंबिया में आए पिछले कुछ वर्षों के सबसे बड़े भूकंप के बाद कम से कम 160 लोगों की मौत हो चुकी है और आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे और अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ज्यादा जानकारी गीता सुनाराम के साथ।
1: कोलंबिया में आए जबरदस्त भूकंप से देश का एक बड़ा हिस्सा हिल गया है। ये 21वीं सदी में दक्षिण अमेरिकी देश में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है, जिसके कारण कई शहरों में इमारतें ढह गई हैं। अब तक कम से कम 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लगभग 570 घायल हुए हैं। 2700 लापता हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचाव दल और स्थानीय लोग मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। भूकंप के बाद 21 झटके महसूस किए गए हैं। देश के राष्ट्रपति ने बताया कि भूकंप और झटकों से कम 1575 घर, 18 स्वास्थ्य केंद्र और 52 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कम से कम 61 इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं। 3 दिन पहले शपथ ग्रहण करने वाले राष्ट्रपति ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के उद्देश्य से आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मलबों में फंसे लोगों को बचाना प्राथमिकता है। भूकंप का केंद्र प्रशांत क्षेत्र के पास था, जो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। सबसे ज्यादा असर चोको इलाके में हुआ, जो कोलंबिया के सबसे गरीब और घने जंगल वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ ज्यादातर जगहों तक सिर्फ नाव या हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता है, इसलिए नुकसान का सही आकलन करने में मुश्किलें आ रही हैं। अमेरिका स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और कोलंबिया के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने $15.5 मिलियन की आपात सहायता देने की घोषणा की है। इजराइल, मेक्सिको, इक्वाडोर और फ्रांस ने भी मदद देने का प्रस्ताव रखा है।
0: आवासीय प्रयोजनों के लिए बिल्डिंग साइट लीज यानी आवासीय उपयोग के लिए लीज, जिसके तहत सरकार घर बनाने के लिए जमीन के इस्तेमाल की अनुमति देती है, के लिए दरों में एक नया संशोधन किया गया है। भूमि और आवास मंत्री के अनुसार ये नए कदम 40,000 से अधिक व्यक्तियों से संबंधित हैं, जिनका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के प्रयासों का समर्थन करना और अनियमित स्थितियों को सुधारना है। शकील मोहम्मद ने आज सुबह एबेन में एक प्रेस सम्मेलन लगाया। देश के दक्षिणी हिस्से में तटीय क्षेत्र और लासूजिन शमशान घाट तक पहुंच, दूसरा पहुंच मार्ग पूरी तरह से तैयार होने तक अस्थायी पहुंच को बरकरार रखा गया है। एबेन में आज सुबह ईओ एग्री के प्रतिनिधियों और भूमि एवं आवास मंत्री के बीच हुई बैठक में ये बात सामने आई। तट के इस हिस्से के लिए एक विकास योजना तैयार करने हेतु बातचीत अभी जारी है। श्रम मंत्रालय में बैठकों के एक दौर के दौरान सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद ट्रेड यूनियन नेता आत्मा शांतो ने दोपहर की शुरुआत में अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। आत्मा शांतो द्वारा उठाए गए औद्योगिक संबंधों के मुद्दों को सुलझाने के लिए 3 कंपनियों के अधिकारियों द्वारा ठोस प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गईं। इसके अलावा श्रम मंत्री ने साल के अंत तक एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट में संशोधनों की घोषणा की है। आज से 25 साल बाद मॉरिशस गणराज्य कैसा दिखना चाहिए, विजन 2050 द्वारा उठाया गया ये केंद्रीय सवाल है, जो देश के दीर्घकालिक बड़े दिशा निर्देशों को तय करने के लिए बनाई गई एक रूपरेखा है। ये महत्वाकांक्षा 3 प्राथमिकताओं पर आधारित है, समृद्धि, समावेशी

0: अखंडता और स्थिरता विजन 2050 के मसौदे को इस मंगलवार पोटली में संसद सदस्यों के सामने पेश किया गया। अंतिम दस्तावेज इस महीने के अंत तक जारी किया जाएगा। मॉरिशस विश्वविद्यालय और जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ वॉइसेस फॉर जेंडर इक्वालिटी कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थागत प्रतिनिधियों को एक ही सवाल पर एकजुट किया गया, एक अधिक समान और समावेशी समाज का निर्माण कैसे किया जाए। छात्रों के साथ सीधे संवाद के लिए आमंत्रित राष्ट्रपति ने उन्हें खुद बदलाव के वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर युवाओं ने लैंगिक समानता के लिए एक चार्टर प्रस्तुत किया और इस दिशा में काम करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता जताई।
1: क्या लैंगिक समानता की शुरुआत हमारे नजरिए में बदलाव से हो सकती है? उन शब्दों से जिन्हें हम चुनते हैं, उन व्यवहारों से जिन्हें हम स्वीकार करते हैं और उन रूढ़िवादी धारणाओं से भी जिन पर हम सवाल उठाने का फैसला करते हैं। मॉरिशस विश्वविद्यालय में युवाओं को इस बदलाव में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके सामने एक अहम सवाल रखा गया। मॉरिशस में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए वे ठोस तौर पर क्या कर सकते हैं? ईशा रंगलाल कहती हैं, हम नहीं कहते कि एक दूसरे से बढ़कर हैं, साथ मिलकर चलना चाहिए जिससे प्रगति हो। हमदान रामदाहन कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी के लिए कई संस्थाएं हैं लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर हैं। हर एक छात्र को अपनी भूमिका जाननी चाहिए जिससे असमानता को दूर कर सके। रवीश जगन कहते हैं, जेंडर को लेकर हम में असमानता है लेकिन हम इसे स्वीकार करते हैं। इसके लिए एक सीमा है, समानता और मौका सभी को देना चाहिए। मानसिकता में बदलाव लाना, रूढ़िवादी धारणाओं पर सवाल उठाना और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के केवल दर्शक बनकर रह जाना, यही संदेश गणराज्य के राष्ट्रपति ने भी दिया। उनका कहना है कि इस परिवर्तन में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति धर्म गोकुल कहते हैं, विचारधारा महत्वपूर्ण है। नौजवानों को पारस्परिक सम्मान की भावना अपनानी चाहिए। मानव सम्मान महत्वपूर्ण है। जेंडर इक्वालिटी राष्ट्र एकता मजबूत करने और समावेशन में भारी योगदान देती है। हालांकि इस बदलाव को वास्तव में स्थायी बनाने के लिए जिम्मेदारी केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहती, पुरुषों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ताकि रूढ़िवादी धारणाओं को खत्म किया जा सके और एक ज्यादा समानतापूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। जेंडर इक्वालिटी फाउंडेशन की मोहिनी बाली कहती हैं, पुरुषों और नौजवानों की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। पुरुष को समस्या का कारण बताते हैं लेकिन वे समाधान का हिस्सा भी हैं। इसलिए नौजवानों को हानिकारक मर्दानगी के बारे में समझाना चाहिए और क्या करना चाहिए इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। शिक्षा से लेकर रोजमर्रा के व्यवहार तक युवाओं से अपेक्षा की जा रही है कि वे पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें। अब लक्ष्य है बातचीत को ठोस कार्यों में बदलना और लैंगिक समानता को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना।
0: और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि श्रम मंत्रालय में बैठकों के एक दौर के दौरान सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद ट्रेड यूनियन नेता आत्मा शांतो ने दोपहर की शुरुआत में अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। आत्मा शांतो द्वारा उठाए गए औद्योगिक संबंधों के मुद्दों को सुलझाने के लिए तीन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा ठोस प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गईं। इसके अलावा श्रम मंत्री ने साल के अंत तक एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट में संशोधनों की घोषणा की है, उनको सुनते हैं।
2: La direction de Inodis Limited pour faire un collective bargaining, la question de salaire, le cas de outrigger qui nous fait bien sûr soulever et le management fin accepter qui régler le problème d'ordre relation industrielle. Dernier employé qui fin est présent, que nous fin cause le problème de comité disciplinaire, l'indépendance du comité disciplinaire et là est dans un rapport qui pour soumettre le ministre par l'employeur concerné fait un dénouement. Vous pensez que c'est la fin de la grève qui est au fin entamée?
0: आज से 25 साल बाद मॉरिशस गणराज्य कैसा दिखना चाहिए? विजन 2050 द्वारा उठाया गया ये केंद्रीय सवाल है जो देश के दीर्घकालिक बड़े दिशा निर्देशों को तय करने के लिए बनाई गई एक रूपरेखा है।
3: उन्नति, समग्रता और टिकाऊपन ये भावी दशकों के लिए मॉरिशस के विकास को निर्देशित करने वाली तीन अहम

0: स्तंभ हैं। विजन 2050 का मकसद अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करना, सामाजिक समावेशन को मजबूत करना और देश को जलवायु, ऊर्जा तथा तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। लेकिन 2050 तक की इस रूपरेखा के साथ स्वाभाविक रूप से संसाधनों का सवाल भी उठता है, चाहे वित्तीय हो, संभार तंत्र, विशिष्टता इत्यादि। ओशन इकोनॉमी एजेंडा में ऊपर है।
1: Big oceans, the ocean economy is very high on the agenda.
2: Pour moi, l'avenir de notre pays.
0: देश का भविष्य अन्य देशों के साथ साझेदारी पर निर्भर करेगा।
1: What I haven't heard is
0: कौन से कदम लागू किए जाएंगे, क्योंकि 2050 तक पहुंचने में और 24 साल हैं, मूल ढांचों पर काम कब शुरू होगा?
3: We've a Mauritius Vision 2050. Mauritian women.
0: विजन 2050 में मॉरिशन महिलाओं की बेहतर भूमिका हो सकती है, अर्थतंत्र, राजनीति, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप में भी।
4: All this economic development is great.
0: सब आर्थिक विकास अच्छी बात है, लेकिन यदि जनता पर इसका लाभ नजर न आए तो ये बेकार है।
1: We have to have clear-cut target.
0: स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अन्य सवाल, इसकी क्या गारंटी होगी कि आज ऐलान किए गए ये उद्देश्यों को बरकरार रखते हुए साकार किया जाए?
4: In terms of governance,
0: शासन के स्तर पर क्या मंत्रालय ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यों में तालमेल हो?
3: Every line ministry will do what they are doing today.
0: तालमेल होना चाहिए, इसकी देख रेख की जाएगी कि यदि कॉन्फ्लिक्ट हो तो उन्हें सुलझाया जाए।
1: What about the institutional alignment?
0: संस्थागत समरूपता का क्या, समन्वयन कैसे होगा केंद्रीय सरकार के साथ 2050 को लागू करने के लिए?
3: There will be a separate chapter on Rodrigue. So Rodrigue has its own specificity and
0: Rodrigue's पर एक अलग से अध्याय होगा। Rodrigue's की अपनी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी विजन 2050 की रूपरेखा की तैयारी कई महीनों के इलाकाई तथा राष्ट्रीय सलाह मशवरे के बाद की गई है। एक ड्रग्स रहित देश, खाद्य सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, सुरक्षा, ऊर्जा और पानी चिंता के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे। मंत्री ज्योति जितेंद्र ने कहा, सभी टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाएगा। ऑनलाइन 80 अर्जियां प्राप्त हो चुकी हैं। नेशनल डेवलपमेंट प्लान भी है, जो विजन 2050 योजना को 5 साल या 3 साल की योजना में अलग अलग करेगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यान्वयन की एक स्ट्रैटेजी हो। विजन 2050 देश की जीडीपी को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है, हमारे आर्थिक आधार को मजबूत करते हुए, विकास के नए स्तंभों की ओर उन्मुख होते हुए और रोजगार प्रस्तावित करते हुए सभी के लिए संभावनाएं प्रस्तुत करते हुए।
5: और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि श्रम मंत्री ने साल के अंत तक एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट और वर्कर्स राइट्स एक्ट में संशोधनों की घोषणा की है। इस पर श्रम मंत्री रेजा उत्तम को सुनते हैं।
6: Il n'est pas normal qu'il y ait une syndicaliste bien fait de la grève de la faim pour qui patronat réagir. Connaissez qui Atma Chantin demandait, c'est une amélioration de bonne relation industrielle. Et tant qu'il y a un employeur pas pour comprendre qu'il est dans eux l'intérêt, c'est dans l'intérêt de l'entreprise qui est un travailleur heureux, pas pour un développement. Par exemple, c'est un employeur qui est un et dans tous les trois cas, c'était les mêmes affaires, une relation industrielle tendue. Le gouvernement pour venir avec un amendement au Workers' Rights Act et Employment Relations Act. D'ailleurs, nous avons un national Tripartite Council qui nous aide chaque mois, qui des ANUP travaillent aux bonnes propositions.
5: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही राम भजनम की परंपरा तेलुगु समुदाय के भीतर एक विशेष स्थान रखती है। भक्ति गीतों और सीखने की प्रक्रिया के बीच इस विरासत को संरक्षित करने और युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आज कई पहल बढ़ रही हैं। राम भजनम को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। गीता सुनारान।
7: भजन और संगीत एक के बाद एक जुड़ती धुनें
5: और एक ऐसी परंपरा जो आज भी जीवित है। राम भजनम भगवान राम को समर्पित है, जिसमें पीढ़ियों से चली आ रही भक्ति

0: भक्ति गीतों की परंपरा शामिल हैं। ये परंपरा भारत से मॉरिशस तक पहुंची और आज मॉरिशस के तेलुगु समुदाय की संस्कृति में गहराई से बसी हैं। विदेश वेंकटा स्वामी कहते हैं,
1: Connaissez-vous Rama Bhajanam? C'est le picose, la prière qui commence in the evening at 6.
0: राम भजनम शाम 6 बजे शुरू होता है। इसमें कई चरणों में प्रार्थनाएं की जाती हैं, जैसे नित्य पूजा, दिए जलाना और अखंड भजन, जो मध्य रात्रि तक चलता है। मध्य रात्रि को मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। इसके बाद और अखंड भजन किए जाते हैं, जो सुबह 6 बजे तक चलते
1: हैं।
0: लेकिन इस परंपरा को जीवित रखने के लिए इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत आज कुछ मंदिरों में राम भजनम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूपशिका कहती हैं, हर रविवार को वे राम भजनम में आती हैं। ये आध्यात्मिक है। दृष्टि कहती हैं कि वे हमेशा से राम भजनम सीखना चाहती थी, एक गुरु ढूंढ रही थी, अब मौका मिला। इस परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। राम भजनम को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने की दिशा में पहल की जा रही है। इस परंपरा को लेकर समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मॉरिशस तेलुगु कल्चरल सेंटर ट्रस्ट की सदस्य नालिनी तुतिया कहती है, यूनेस्को में राम भजनम को शामिल करने का उद्देश्य है मॉरिशस में सांस्कृतिक संतुलन लाना। कई चरण हैं जिनका पालन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मॉरिशस में समुदाय में लोग राम भजनम कैसे करते हैं। आज इन प्रयासों का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ये सिर्फ भजनों और प्रार्थनाओं की बात नहीं है, बल्कि तेलुगु समुदाय की पहचान के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने का सवाल भी है।
2: रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर कुछ दिनों से तिथि और चंद्र ग्रहण की आशंका से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इस संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने आज एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। सदस्यों ने स्पष्ट रूप से सूचित किया कि रक्षाबंधन की तिथि आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त ही है और किसी भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस त्योहार पर नहीं पड़ेगा। अशिता रखू।
3: आधिकारिक तौर पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने पंचांग तथा प्रमाणित पंडितों और आचार्यों के उच्च परामर्श के बाद त्योहारों के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन हेतु अपनी कटिबद्धता दोहराई है और जनता को आश्वस्त किया है कि रक्षाबंधन का उत्सव सुचारू रूप से मनाया जाएगा और किसी भी भ्रम का समाधान पूरी गंभीरता से किया गया है।
4: व्रत त्योहार और सभी पूजा की तारीखें जो है काउंसिल ऑफ प्रीस मॉरिशस जो है द्वारा तैयार की जाती है और फिर भारत के संस्कृत विश्वविद्यालय से उनकी पुष्टि की जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर उन्हें तैयार की जाता है। रक्षाबंधन जो है फ्राइडे 28 अगस्त को हम सभी लोग मना रहे हैं।
3: महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस अवधि के ठीक बाद सूर्योदय होगा, जो समय अमृत यानी शुभ माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के उत्सव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
5: भद्रा एक अशुभ समय में आपको कह सकता हूँ, भद्रा हमारे शास्त्रों में और पंचांगों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि भद्रा को हमें छोड़ना चाहिए। 27 को गुरुवार के दिन 27 को सुबह से ही भद्रा है और पूरा दिन भर भद्रा है। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटा पहले उसका सूतक शुरू होता है अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र के हिसाब से। तो इसलिए उस दिन पूर्णिमासी का जो व्रत है, लोग व्रत करेंगे लेकिन पूर्णिमासी के चंद्रमा का पूजन नहीं करेंगे। चंद्रमा पर ग्रहण है मॉरिशस में सुबह 5:23-5:25 के आसपास थोड़ा सा दिखेगा। तो क्योंकि सूर्योदय होने के बाद हमारा दिन जो शुरू होता है वो सूर्योदय होने से शुरू होता है, तब भी शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि ग्रहण

0: में और रक्षाबंधन किया जाता है।
1: इसी अवसर पर मौर्य सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन अगले 23 अगस्त को सुबह 9:30 बजे गंगा तालाब की डिवाइन म्यूजियम के निकट 5 मुखी हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजा का आयोजन भी कर रहा है। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। रात के दौरान पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। कल दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और उत्तर पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और पूर्व के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:33 पर सूरज उगेगा और शाम 5:55 पर सूरज ढल जाएगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को इनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:22 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। बनान क्लिनी में 69 साल के 69 years old के श्री देवानंद रघु, जो राजेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले क्यूपिप कृषि में के पुराने कर्मचारी थे। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे सत्यम शर्मा रघु के घर बनान क्लिनी से उठाकर क्लिनी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। अवेन्यू राजकुमार लेन बेतो काट्रबोन में 79 साल की 79 years old की श्रीमती चंद्रावती मेराई, पैदाइशी नाम जावक और जुलुलु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन की 1:30 बजे उनके घर अवेन्यू राजकुमार लेन बेतो काट्रबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:30। रॉयल रोड मर्दस्थालिया में 83 साल के 83 years old के श्री महेंद्र सिंह बावानीपेक, जो दाऊदर नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन की 11 बजे उनके घर रारोद मधुस्थालिया से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। टेम्पल रोड थ्वाबुचिक में 52 साल की 52 years old की श्रीमती लक्ष्मी करुणदास अचामा, पैदाइशी नाम मुलिया और जुप्रिया नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनकी माँ सीला मुलिया के घर टेम्पल रोड थ्वाबुचिक से उठाकर प्रेमानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30। पेलग्रेन रोड सेवास्तोपोल में 61 साल के 61 years old के श्री ऋषि कुमार गोपुल, जो ऋषि नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे सेवास्तोपोल के फिलिंग स्टेशन तुताल के मालिक थे। उनकी अर्थी गुरुवार को सुबह 10 बजे उनके अर्थी गुरुवार को सुबह 10 बजे उनके भाई हरिदत्त गोपुल के घर पेलखाई रोड सेवास्तोपोल से उठाकर सेवास्तोपोल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन ऑन थर्सडे एट 10 AM। नंबर 21 पालमा रोड काट्रबोन में 66 साल के 66 years old के श्री विनोद कुमार बुलक, जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके घर नंबर 21 पालमा रोड काट्रबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides, RM2.

6:13 हो चुके हैं। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग ट्रैक।

0: जी हाँ, आंखों में नींदें, नींदों में सपने, लेकिन कुछ आंखों में सपने नहीं बल्कि ख्वाब होते हैं. और आई नो कि सोने के लिए तो बस ख्वाब की ज़रूरत ही होती है, लेकिन अगर हकीकत में आप इस ख्वाब को साकार करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है. ये तो हमेशा हम कहते हैं, बट मेहनत के बारे में बिल्कुल नहीं बात करेंगे, क्योंकि आई नो अभी आप थके हारे घर वापस आए हैं. इट्स रियली नॉट ईजी फॉर यू कि आप लोग अभी घर वापस आए हैं और हम आपके बारे में, आपके साथ काम के बारे में बात करें, है ना. तो चलिए अभी के लिए बस आपको मौका मिल रहा है टू सिट बैक, रिलैक्स एंड बस हमारे खूबसूरत गीतों को एंजॉय करते रहिए. हम लेकर आए हैं आप लोगों की खिदमत में ब्यूटीफुल गाने टिल 9 PM. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है. चलिए जी, वंस अगेन आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके मैजिकल मैसेजेस का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. डेफिनेटली आई'd लाइक टू नो कि आपके साइड में क्या कुछ हो रहा है. ज़रूर बताइएगा, आप काम से घर वापस आ चुके हैं, आप डिनर ले रहे हैं, किचन में अभी तक खाना तैयार कर रही हैं, या फिर आप बर्तन मांज रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, अगर बैकग्राउंड में हमारी आवाज़ गूंज रही है तो दिल से आपको शुक्रिया अपने डेली रूटीन में हमेशा हमें साथ लेकर घूमने के लिए. सो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ तो है ही, और इस साथ को और भी हम दिलचस्प और खूबसूरत बनाएंगे खूबसूरत गीतों के साथ.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: मेरा चेहरा जब नजर आए एंड किसी ने हमें मैसेज भेजा है हेलो डियर माय हबी एंड आई आर गोइंग होम फ्रॉम जिम कपल गोल्स ऐसे ही होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को फिट रखें खुद के लिए शालिनी जी यू वांट टू डेडिकेट दिस गाना टू योर हस्बैंड द लव ऑफ योर लाइफ मिस्टर यश जयपैमाल Because it's part of your love story and to all lovers and couples. शायद ये गाना आपके दिल के बहुत ही करीब है तो चलिए that was तेरा चेहरा in the beautiful mesmerizing voice of Arjit Singh.
1: RM2
2: Radio Musti
3: Paris pour plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point à lieu dans SBI Sissipay tous les jours, à partir du 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h. Point à shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipay, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
1: RM2
2: Radio Musti
1: Evening Lounge
4: RM2
1: Radio Musti

मेरी जान हो तुम, ये सिर्फ गाना नहीं है बल्कि प्यार को एक्सप्रेस करने का एक तरीका भी है। आप सोचिए, अगर आप किसी को मैसेज भेजकर ये कहे कि भाई देखो मेरी जान हो तुम, उनको कितना अच्छा लगेगा। और चलिए, वी विल डेफिनेटली लाइक टू हियर फ्रॉम यू, एंड भले ही आप हमसे ऐसी बातें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप किनको याद कर रहे हैं। ये भी हम माइंड नहीं करेंगे, अगर आपको गाने भी अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप ये भी ना कहें कि आपको गाने अच्छे लग रहे हैं, तभी हमें पता चल जाता है कि आपको गाने सच में अच्छे लग रहे हैं, वरना आपके मैसेजेस तो आते ही नहीं। सो चलिए, यहाँ पर कुछ आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रहे हैं। दिव्या जी प्रणाम,

0: और नमस्ते सभी ओपन यूनिवर्सिटी के स्टाफ और ड्राइवर्स की तरफ से अगला गाना और आज इस बार बरसाती मौसम में एक प्यारा सा गीत बनता है एंड नाजायज मूवी से आपको एक गाना सुनना है. आई गेस इट्स द सॉन्ग तुझे प्यार करते करते. ये हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि इस शो में ये गाना एकदम परफेक्टली फिट होता है. तो चलिए आशीष जी साथ देने के लिए शुक्रिया आपको एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त शायद हमें सुन रहे हैं सात समुंदर पार हैं या फिर मॉरिशस के अंदर ही, टू ऑल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, दिल से आपको शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए. कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए क्योंकि जब आपका साथ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलता है तभी जाकर एहसास होता है कि इस शो में चार चांद तो एक्चुअली आप लोग ही लगाते हैं.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

such a sweet and a beautiful gana aur हमेशा हम कहते हैं ना कुछ ऐसे गाने होते हैं जो दिल के बहुत ही करीब होते हैं एंड कुछ ऐसा गाना अगर आपके दिमाग अगर आपके जहन में आ रहा है और आप इस जज्बात को एक बार फिर से महसूस करना चाहते हैं पहली बार की तरह तो बिल्कुल आप हमें याद कर सकते हैं ऑन 5491294 एंड चलिए कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे एंड आशीष जी आपने कहा है लोड्स ऑफ थैंक्स दिव्या जी आपका सिलेक्शन टॉप से भी ऊपर हैं आज क्या बात है थैंक यू सो मच गुड लक आपको भी एंड आप कहती हैं हेलो नमस्ते गुड इवनिंग दिव्या जी गुड इवनिंग टीना जी कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप का मैसेज आता है ना तो हमारी होंठों पे हंसी खुद बखुद आ ही जाती है थैंक यू फॉर एंजॉइंग द प्लेलिस्ट सभी आपके फेवरेट गाने ही चल रहे हैं जानकर बहुत ही अच्छा लगा हाई वॉल्यूम किचन में हैं आप क्या कर रही हैं आप बर्तन मांज रही हैं खाना बना रही हैं या फिर आप डिनर ले रही हैं आई गेस शायद डिनर ले रही होंगी तो चलिए आपको बना पिची नेक्स्ट ड्रा गोज आउट टू हबी जान आपके बच्चे हैं एंड टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स जो आपको जानते हैं आपको भी शुभरात्रि हर हर महादेव आपको भी गॉड ब्लेस यू एंड साथ में यहाँ पर आप कहती हैं नमस्ते दिव्या प्लीज़ एक गाना मेरी सिस्टर के लिए और साथ में आपका बेटा है नितेश मैं प्यासा तुम सावन फ्रॉम मीला राम दी कल ऑफ मोताई ब्लॉश और चलिए हम ट्राई करते हैं इस गाने को चलाने के लिए बट वी डोंट प्रॉमिस बट बाकी के सारे गाने आपके नाम डेडिकेटेड हैं हाय रेडियो मस्ती सीता गीता भुलूराम फ्रॉम शातु बनारस डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर मोम भगवंती एंड आपके पूरी फैमिली के लिए जो शायद इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ और उन तमाम लोगों के लिए जो आपको जानते हैं तो चलिए ऐसे ऐसे आपके मैसेजेस आते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है आप ना ही हमारे लिए मैसेजेस भेजते हैं बल्कि उन लोगों को भी याद करते हैं जो आप इस वक्त याद कर रही हैं तो चलिए ये बहुत ही ख़ास शो है

0: जहां पर फीलिंग्स उभर उभर कर सामने आते हैं तो यू कांट रियली हेल्प इट रादर देन सेंडिंग मैसेजेस. और हम तो ये चाहते हैं कि आपके जज्बात एकदम से सामने आए और बस आप के मन में जो भी आपने दबा के रखा है वो बस सामने आ जाए.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a radio musty.
1: हर एक लड़के का ख्वाब है और हर एक लड़की का सपना है कि ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को सवार दे, जिंदगी को जिंदगी बनाए. एंड आई जस्ट होप कि आपको अपना प्यार मिले, और जब आपको अपना प्यार मिले तो आपका प्यार आपसे कभी ना बिछड़े.

0: प्यार तो बिल्कुल हमेशा रहेगा और वैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में बस आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हमेशा आपको ये दिलासा देता हो कि चाहे जो भी हो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ या फिर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ। कभी कभी कुछ बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार किया है तो इसको जताना भी पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जिनसे हम मुलाकात करते हैं वो कहते हैं कि प्यार तो बहुत है लेकिन मुझे जताना नहीं आता है, लेकिन आपको जताना आना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्यार में आप उस साइड से उस शख्स को स्पेशल फील कराएं जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हो। कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आप कुछ करते हैं तो बदले में आपको कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इट्स वेरी ह्यूमन कि अगर आप प्यार करते हैं तो बदले में थोड़ा सा प्यार आप एक्सपेक्ट तो करते हैं ही। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं टू ऑल दोज जो कहते हैं कि प्यार तो आता है लेकिन जताना नहीं आता, आपको छुपाना बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप जताना शुरू कर दे। चलिए 8:07 हो चुके हैं, दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहां पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज। कुछ आपके मैसेजेस के साथ हम शो को आगे बढ़ाते रहेंगे टिल 9 PM। आई नो आपके मैसेजेस ऑलरेडी हम तक पहुंच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपको भूल चुके हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं क्योंकि आपसे ही ये शो चलता है और आप ही हैं जिसकी वजह से ये शो में चार चांद लगता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ देने के लिए एंड एक बार फिर से आपके मैसेजेस का हम इंतजार कर रहे हैं ऑन द मैजिकल नंबर व्हिच इज 5499-1294।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

चाहे हम लाख कहें कि प्यार में बिल्कुल मीठी टकरार नहीं होनी चाहिए या फिर प्यार में आप कोई दूसरे को बिल्कुल नहीं सताना है, तो ये ऐसा लगेगा कि हम फिल्मी बातें कर रहे हैं या फिर ऐसे ख्याली पुलाव बना रहे हैं, क्योंकि जब प्यार होता है ना तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए एंड यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप एक दूसरे को प्यार से मनाएं। और रूठने मनाने का सिलसिला तो प्यार में बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्पेशली जब मीठी टकरार के बाद प्यार और भी बढ़ जाता है तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए यहाँ पर कुछ और आपके खूबसूरत मैसेजेस के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। हाय दिव्या जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपको बूँ कुहाज, थैंक यू सो मच। हमारी प्यारी स्वीट अनीता जी, आप हफ्ले कॉन्फ्लाक से और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। यहाँ पर आप कहती हैं, हाय दिव्या जी, गुड इवनिंग, होप यू ऑलरेडी ईट इन हैव योर डिनर। हाँ बिल्कुल, हमने अपना डिनर तो ले लिया है, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आपने भी अपना डिनर ले लिया होगा। एंड द नेक्स्ट गाना गुजार फॉर पति लाल देव फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा, थैंक यू सो मच सुया जी। अगला गाना गुजार स्पेशली आपके नाम भी। और यहाँ पर किसी ने क्या खूब किसी ने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, हाई दी ग्रेट इवनिंग टू यू ऑल RM2 टीम। और आप कहते हैं कि ये सारे गाने आपको बेहद इमोशनल कर रहे हैं और आपने किसी के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस किया है, और कहती हैं कि माई लव फॉर हिम वॉज रियली वेरी ट्रू, ही इज़ माई जान, माई एवरी थिंग, भले ही हम दूर हैं लेकिन मेरी आँख उसको देखने के लिए तरस जाती है। ऑल आई कैन डू एंड ऑल आई कैन से इज़ आई लव यू अ लॉट, सागर से गहरा है प्यार मेरा, ओनली आई नो हाउ आई लिव। ये तो बिल्कुल वही सिचुएशन हो गया, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, लगता नहीं दिल मेरा बिना आपके, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी का दस्तूर यही है। कुछ लोग आँखों से दूर चले जाते हैं, कुछ लोग दिल के करीब इतने हो जाते हैं कि उनको देखे बिना ही उन पर इतना प्यार आता है कि क्या कहें। थैंक यू सो मच आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए आशा जी, एंड आई फील रियली वेरी वेरी हैप्पी कि आप अपने फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस कर रही हैं। काफ़ी लंबा मैसेज आपने भेजा है एंड इट्स वेरी रेयर टू सी समवन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग लाइक दिस ओपनली, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। श्वेता हुकुम, आप है बुना कोई से, नेक्स्ट रोमांटिक गाना जाएगा फॉर हबी रोशन के नाम फ्रॉम रानी, वॉन्ट टू टेल हिम दैट आई लव यू सो मच हस्बैंड जी, क्या बात है। जान, आप है काहुलिन से, नेक्स्ट गाना गुजार फॉर योर लव जानू, और जानू का नाम है मोन, और एज यूजुअल अभी वैन ड्राइव कर रहे होंगे तो उनको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू ड्राइव वेरी सेफली एंड केयरफुली। एंड थोड़ा आपका मैसेज यहाँ पर इनकम्प्लीट आया है, अगर आप एक बार फिर से अपना मैसेज हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें याद कर सकते हैं, नंबर वही है 5499-1294। इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

0: ऐसे ऐसे गाने हम चलाएंगे और आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपको तो प्यार आना ही है, और वो प्यार का एहसास जो आपको पहली बार के लिए हुआ था, उस प्यार का एहसास अभी होना कितना स्पेशल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको प्यार होता है, भले ही आपके प्यार को 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो फीलिंग उतना ही फ्रेश होना चाहिए, तभी जाकर प्यार में और मजा आता है।
1: RM2 Radio Musti.

0: मुझे तो लगता है कि सारी फिजा जब गूंजती है तो ऐसे में प्यार महक उठता है और प्यार का फ्रेग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके ज़िंदगी में प्यार की खुशबू ना आए तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है. इसलिए ज़िंदगी को साकार करने के लिए और इसको आबाद बनाने के लिए प्यार का होना बहुत ही ज़रूरी है. और हमारे गीतों को सुनने के बाद आपके मन में कैसे कैसे एहसास आ रहे हैं आप ज़रूर हमें बताइएगा और स्पेशली किसको याद कर रहे हैं. 8:45 हो चुके हैं. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM. कुछ प्यार भरी बातों के साथ प्यार भरे गाने भी आपको सुना रहे हैं एंड आई जस्ट होप कि आप उस पार से बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हर एक गीत को. और हम यही चाहते हैं कि आप बस रिलैक्स करें, आंखें बंद करके हर एक गीत को प्यार के एहसास के साथ इसको फील करें और साथ में बस क्या कहें, प्यार के एहसास साथ हैं तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत लगने लग जाती है और छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी खुशियाँ ढूंढने लग जाते हैं. एंड अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक और मे बी यू आर इन लव विद द राइट पर्सन.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.
0: दिल के मिलने के बाद दिल का खिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी हैव दिस वन, अ ब्यूटिफुल वन, टू ऑल द 90s लवर्स, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाजों में.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. बहुत ही प्यार से और बहुत ही मिन्नतों के बाद, बहुत ही दुआओं के बाद कोई अपना ऐसा मिल जाता है जो अपने से भी अपना बन जाता है. And becoming the answer to someone's prayer is so special, है ना? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमेशा सलामत रहे और आपके साथ रहे. और ये भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि हमेशा आपका प्यार आपसे कभी जुदा ना हो और आपका प्यार बल्कि दिन ब दिन और भी गहरा होता जाए. चलिए उतने ही प्यार से इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम 7 से लेकर रात के 9 बजे के बीच. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाज़त, बस अलविदा कहेंगे और शुभरात्रि.

0: नमस्कार और स्वागत आप सभी का RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छे से गुजरा होगा मुस्कुराहट के साथ। अब वक्त है कि दिन भर की भागा दौड़ी को पॉज दे दें और रात की सुकून भरी ये जो महफिल है, या कहें कि ये जो प्रोग्राम है, उसमें शामिल करें सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। स्वागत है आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स, जहां पर अगले 3 घंटे हम बात करने वाले हैं जिंदगी की, यादों की, सपनों की और बॉलीवुड की। तो तैयार रहिए, एक कप चाय या कॉफी बना लीजिए, लाइट्स को थोड़ा डिम कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं खूबसूरत म्यूजिकल सफर।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: नास्ती।
1: भाई कभी कभी हम पूरे दिन दूसरों से बात करते रहते हैं लेकिन खुद से बात, अरे मन की बात करना भूल जाते हैं। आज सिर्फ एक मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, इस हफ्ते किस बात ने आपको सबसे ज्यादा खुश किया? छोटी सी अचीवमेंट हो या किसी अपने की मुस्कुराहट, हर वजह खास होती है। अपना जवाब लिखकर दिल पर प्यार की स्याही से नोट कर लीजिए और ये देखिए कि हर दिन आप कुछ ऐसा स्पेशल करते जाएंगे तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी।
2: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: भाई कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर नया दिन एक नई बिगनिंग लेकर आता है। अगर कल से आप एक नई आदत शुरू कर सकते हैं तो वो क्या होगी, सोचिए। सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना, या फिर हर दिन किसी एक इंसान की तारीफ करना, किसी को उसका ड्यू देना। अरे आज ही अपना प्रॉमिस लिखिए और उसकी शुरुआत कल से शुरू कीजिए। भाई म्यूजिक के साथ बदलाव भी और भी खूबसूरत हो जाता है।

0: दोस्ती।
1: भाई हम अक्सर परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कई बार वो इंतजार हमें रोक देता है। अगर दिल में कोई सपना है तो उसकी पहली सीढ़ी आज ही चढ़ लीजिए। छोटा कदम भी सफर की शुरुआत होता है, ये सोचकर एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत तो कीजिए। उसके बाद देखिए वक्त कटता जाएगा, आपको अपना ऑब्जेक्टिव साफ नजर आएगा।

कहते हैं कि रात का अपना एक जादू होता है। एक तरफ जहां पर आप सोचते हैं कि आज पूरे दिन क्या हुआ, वहीं पर आने वाले दिन में क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या प्लानिंग है। तो बस सोच लीजिए इस हफ्ते आप क्या स्पेशल करना चाहते हैं या फिर किस चीज के पीछे पड़े हैं। वो कहते ना कि एक जो मंजिल है उसको पाना है या फिर सपना है जिसको सच करना है। फैमिली के साथ वक्त हो, दोस्तों के साथ मस्ती हो या सिर्फ घर पर आराम करना हो, भाई ये भी शामिल हो सकता है। चलिए साहब, जो भी है उसको जी भर के कीजिए। अभी म्यूजिक का मजा लीजिए।

0: नास्ती।
1: कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड से दिल हल्का हो जाता है। आज रात सोने से पहले तीन चीजों के लिए थैंक यू जरूर बोले। हो सकता है वो फैमिली हो, सेहत हो, एक दोस्त हो, या सिर्फ ये सुकून भरी रात हो। जब हम शुक्रिया कहना सीख लेते हैं, धन्यवाद कहना सीख लेते हैं, तो खुशियाँ खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे कभी कभी एक मौका मिलता है कि जब हम छोटे थे तो क्या क्या मस्ती करते थे और कैसे पेरेंट्स उस सिचुएशन से डील करते थे। आज आप खुद पेरेंट्स हैं और सोचते हैं बच्चों के बारे में तो अपना टाइम तो जरूर याद आता है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन की नहीं हम ऐसे नहीं थे, हम वैसे नहीं थे, लेकिन वक्त भी तो बदल गया है। लेकिन अपना जो रिश्ता है ना अपनों के साथ, ये कभी मत बदलेगा।
2: You're listening to RM2, a radio must see.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों, कभी कभी फोन को साइड पर रखकर सिर्फ आसमां देखना भी जरूरी होता है। खामोशी भी एक खूबसूरत मेलेडी होती है, बस उसे सुनने की फुर्सत चाहिए। आज रात अगर मौका मिले ना तो 2 मिनट के बालकनी या आंगन में जरूर बिताइएगा। हो सकता है वही 2 मिनट पूरे हफ्ते की थकान मिटा दे।

0: वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और रात अपनी सबसे खूबसूरत खामोशी में ढल रही है। ऐसे में वक्त मिलता है कि उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आज हुई, या फिर जहाँ पर आपको गुस्सा आया, यहाँ पर आपको कितना कंट्रोल अपने आप को करना पड़ा। लेकिन गुस्से से किसी का फायदा नहीं हुआ। जैसे कहते हैं, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। तो इससे किसी का भला हुआ नहीं। तो उस वक्त का गलत लिया हुआ फैसला अगर अभी भी बदल सकते हैं तो देर नहीं हुई।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: नास्ती।
1: अच्छा कहते हैं कि वॉक द टॉक, मतलब अगर कोई ऐसा फोन आता है जिसमें आपको लैपटॉप या स्क्रीन के सामने रहने की जरूरत नहीं है तो क्यों ना थोड़ा सा चल फिर लें और बात कर लें। एक तो इससे आपकी मूवमेंट हो जाएगी, दूसरा कहते हैं कि जब आप घूमते हैं फिरते हैं और साथ में जैसे नेचर को देखते हैं या फिर किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी थॉट्स भी ज़्यादा आती हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है और मूवमेंट के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन शेड्यूल भी।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अच्छा, दिमाग में ये भी आता है कि कुछ अधूरे काम रह गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अधूरे हैं। अरे साहब, कोशिश कर रहे हैं तो हम पूरे हैं। खुद को थोड़ा क्रेडिट दीजिए, क्योंकि आपने एक और हफ्ता पूरी हिम्मत के साथ बिताना है। अभी तो मिडिल में ही पहुंचे हैं, तो वक्त अभी बाकी है। नया दिन होगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और साथ में अपनी मुस्कुराहट, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए होमवर्क करते रहो, जिंदगी की रेस में आगे बढ़ते रहो।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: तो चलिए साहब, ऐसी बातों बातों में पहुंच गए टॉवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी कि लेट नाइट ग्रूव्स आर&डी पर। भाई दिन खत्म होते ही अगली प्लेलिस्ट एक बार फिर से चालू हो जाएगी। तो बस आप सभी का शुक्रिया कि इतने प्यार से आपने अपना साथ दिया, और साथ साथ में एक नया दिन आपके इंतजार में बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आप उसकी शुरुआत एक मुस्कान, एक पॉजिटिव सोच और आर&डी के गानों के साथ करेंगे। अपनों का ख्याल रखिए, दिल से जिए और खुलकर हंसे। और याद रखें, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अभी चाहूंगा आपसे इजाजत, मैं विकास, और सभी को स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, और फिर मुलाकात होगी कुछ नए गानों के साथ, एक अलग प्रोग्राम के साथ, लेकिन चैनल वही RM2। अभी के लिए नमस्कार।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
3: लड़की बड़ी अनजानी है।
0: Radio Masti, all the way.
4: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
0: Radio Masti, the latest news and the greatest mix of music.

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।